लता मंगेशकर की आवाज में अगला गीत आनंद बख्शी की रचना है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम अपना बना लो।

0: जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जे ओम प्रकाश को, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि, उनकी याद का दिन। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशिक हूं बहारों का, इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर हैं, आनंद बख्शी की रचना, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम, पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
4: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
3: जी,
4: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
3: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
5: निकला तो गड्डी लेके
3: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर। शोक अदाओं के

0: उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
1: और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए
4: एक आवाज जिसमें

जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर
1: सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: ब्रेक से पहले आपने सुना था आसपास फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल थे। अब आपको सुनवाते हैं अर्पण फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप गीत सुन रहे थे अर्पण फिल्म से। इसी गीत के साथ कार्यक्रम यादों की महफिल आज यहीं संपन्न होता है। आज हमने आपको सुनवाए फिल्मकार जे ओम प्रकाश की फिल्मों के गीत, क्योंकि आज था उनकी याद का दिन। अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे आज मंजूरी दी, राज्यसभा ने सोमवार को इस विधेयक को पारित किया था। इस बीच संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में सदन में कुछ देर का मौन भी रखा गया। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर

0: अपने सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें, आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। राष्ट्रपति ने देश के बुनकरों, उद्यमियों, डिजाइनरों, विद्यार्थियों और हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के पद से इस्तीफा देने मात्र से कथित बेहिसाब संपत्ति के मामले में उसकी आपराधिक जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के 2 सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहने के बाद ही राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 8,300 रुपए रिवल्डी सभा में उपस्थापित करता हूँ।
1: इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्षी भाजपा और एनडीए विधायकों ने वेल में आकर जोरदार हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। इस अनुपूरक बजट पर आगामी 10 अगस्त को सदन में विस्तृत चर्चा और मतदान होगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज जेपीएससी प्रकरण को लेकर एनडीए विधायकों ने विधानसभा परिसर में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक नीरा यादव ने परीक्षा लीक मामलों को लेकर सरकार की नियत पर सवाल उठाए।
2: देखिए, सरकार इसलिए वार्ता के लिए तैयार नहीं हो रही है, इन्हें डर है कि हमारी बात लीक ना हो जाए। अरे बंद कमरे में क्यों बात करेंगे, ओपन करिए ना। दिल्ली में केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक में त्वरित कार्रवाई निष्पादन करने का जो कार्य किया है, वैसे कार्य ये सरकार करे।
1: नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने छात्रों के वार्ता प्रतिनिधिमंडल में पूर्व महाधिवक्ता को शामिल करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इस आंदोलन के पीछे भाजपा और कोचिंग माफिया की साजिश होने का आरोप लगाया है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए छात्रों से अपने आंदोलन को राजनीति से दूर रखने की अपील की।
3: सरकार का स्पष्ट मंतव्य, छात्रों से वार्ता के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल का जब सूची आएगा, सरकार वार्ता करेगी और समाधान करेगी। छात्रों से भी एक अपील, आप अपने इस स्वच्छ भविष्य के आंदोलन को राजनीति करने वाले लोगों के हाथ में गिरवी न रखें।
1: रांची में जारी छात्र आंदोलन के बीच भूख हड़ताल पर बैठे राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आनन फानन में एम्बुलेंस और विरोध कर रहे अन्य साथियों की मदद से उसे रांची सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी रांची सदर SDO को भी दे दी गई है। राज्य में SIR के तहत चुनाव आयोग तार्किक विसंगतियों को नो मैपिंग श्रेणी के 63 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजकर जवाब तलब करेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने ड्राफ्ट मतदाता सूची के दावों एवं आपत्तियों के त्वरित निस्तारण के लिए अतिरिक्त सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। रांची स्थित CMPDI ने CSR पहल के तहत झारखंड के 60 बेरोजगार युवाओं को फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन का मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण देने के लिए फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विसेज के साथ एक समझौता किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए हस्ताक्षरित इस प्रोजेक्ट के लिए CMPDI ने 73,62,000 रुपए मंजूर किए हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्रालय की पहल पर 9 से 15 अगस्त तक रांची सहित झारखंड के विभिन्न स्थानों पर विशेष बैंड प्रस्तुतियों के जरिए देशभक्ति की धुनें गूंजेंगी। रांची के अलबर्ट एक्का चौक पर 9 अगस्त को CRPF बैंड की प्रस्तुति होगी, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि होंगे। श्री सेठ ने अलबर्ट एक्का चौक पर आयोजित होने वाली देशभक्ति प्रस्तुति के लिए सभी नागरिकों को आमंत्रित किया है। राज्य वन विभाग ने वन्य जीवों की सुरक्षा और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व, दलमा और रामगढ़ में AI आधारित ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत की है। आधुनिक तकनीक पर आधारित इस प्रणाली के जरिए कैमरा ट्रैप, ड्रोन सर्वेलांस और त्वरित रेस्क्यू टीमों की मदद से वन्य जीवों की गतिविधियों पर 2400 घंटे पैनी नजर रखी

0: की जाएगी। धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम के उपनिदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार को राष्ट्रपति भवन से स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले गरिमामय एट होम रिसेप्शन में शामिल होने का विशेष निमंत्रण मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित इस उच्च स्तरीय समारोह के लिए यह प्रतिष्ठित बुलावा मिलने पर श्री कुमार बेहद उत्साहित हैं।
1: हमारा नॉमिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से हुआ था, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन माइनिंग मिनरल अर्थ साइंसेज क्रिटिकल मिनरल एरिया में है। इसके कारण हमारा नॉमिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दिया ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम के यहाँ, और हमें प्रेसिडेंट मैडम के यहाँ से एक इन्विटेशन आया है एट होम रिसेप्शन में शामिल होने के लिए।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में उत्कृष्ट शिल्पकारों को सम्मानित करते हुए हथकरघा उद्योग को भारत की अनमोल सांस्कृतिक धरोहर एवं महिला सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम बताया। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में देश की बुनाई परंपराओं पर 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए।
2: वोकल फॉर लोकल अभियान के द्वारा भी भारतीय हथकरघा को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच पर जैसे कि ग्लोबलाइज करने के लिए सोचा जा रहा है। इससे हमारे बुनाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी मिल रही है।
0: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी

0: 55 अंक लुढ़ककर 24,582 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,39,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,35,000 रुपये प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने तत्काल चेतावनी जारी करते हुए अगले 3 घंटों के भीतर राज्य के 8 जिलों बोकारो, धनबाद, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, पाकुड़ और साहिबगंज में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारी हंगामे के बीच झारखंड विधानसभा में 8,399 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश। जेपीएससी मामले पर हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 10 अगस्त तक स्थगित। राज्य में एसआईआर के तहत 63 लाख से अधिक वोटरों को चुनाव आयोग भेजेगा नोटिस। विसंगतियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति। स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय की विशेष पहल। 9 अगस्त को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर सीआरपीएफ बैंड की गूंजेगी देशभक्ति धुन। राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी बधाई। कहा 70% महिला कार्यबल के साथ यह क्षेत्र आत्मनिर्भरता का बना मजबूत आधार। और रांची मौसम केंद्र ने अगले 3 घंटों में बोकारो, धनबाद, गोड्डा और गुमला सहित 8 जिलों में वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और तेज हवा का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: श्रोतो आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अनुरंजनी में सुनते हैं शिप्रा बोस की गाए कुछ ठुमरी, गजल और दादरा।

झूम उठा और बोल पड़ा, आया सावन झूम के। फिर सावन के झूले पड़े और झूले देखकर होंठ गुनगुनाने लगे कि सावन के झूलों ने मुझको पुकारा, मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। क्या बात है? लेते हैं अब अगला गीत, भोला भाला। इस फिल्म से लता मंगेशकर ने और किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है। आनंद बख्शी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत। सुनिए ये गीत।

हमारी एक श्रोता कहती हैं कि मुझे लगता है कि आज की इबारत का मुख्य रंग सावन, प्यार, ख्वाब, दिल और मिलन है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और एक श्रोता कहते हैं कि इस वक्त हम बाबा अमरनाथ कश्मीर के पवित्र स्थान के बेस कैंप में हैं। और ठीक है, आप ये हमें बता रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि बारिश में भीगना हमारे लिए कष्टकारी होता है, इसलिए हम तो वर्षा का आनंद घर के अंदर बैठकर ही लेते हैं, विशेषकर अपने टेरेस के झूले पर गर्मा गर्म चाय और पकोड़ों के साथ। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि हमें तो कॉलेज का समय याद आता है, हम सब दोस्त कैंटीन में गर्म गर्म समोसे पैटीज खाया करते थे। ओह, एक और श्रोता कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो पापा यही सब सॉन्ग सुनते थे तो मुझे बहुत गुस्सा उठता था, लेकिन आज बड़ा होने के बाद यही सब सॉन्ग मुझे दिल को सुकून दे रहे हैं। क्या बात कही है आपने। पुराने गीत इतने सुकून भरे होते हैं, सुनना जरूर चाहिए आज की जनरेशन को भी। देखिए, हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि बचपन में हमारे गांव से थोड़ी दूर हरा भरा वन था और वहां शिवजी का मंदिर था, वहां सावन की अमावस को मेला लगता था, वहां वड़ का बहुत ही विशाल वृक्ष था, वड़ की लंबी डाली लटकी हुई रहती थी, उसी डाली को लटक कर हम झूला झूलते थे और बहुत ही आनंद आता था। बिल्कुल आता रहा होगा। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन की पहली बारिश में जवान होते थे तब भीगने का मजा और ही था, लेकिन अब इस उम्र में अंगूर खट्टे हैं, सिर्फ याद ही काफी है। हमारे एक श्रोता और कहते हैं कि सावन की फुहार और प्रेम का संबंध प्रकृति और मनुष्य के बीच का सबसे कोमल समझौता है। बारिश धरती को सींचती है और प्रेम दिल को, दोनों ही बिना मांगे आते हैं और जब चले जाते हैं तो कुछ गीला, कुछ यादगार छोड़ जाते हैं। सावन, अगर बारिश हो तो भीगने से मत डरना, और अगर कोई याद आए तो उसे भी भीगने देना है ना, लेकिन अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि अगर उम्र ज्यादा है तो और छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा हमें देखभाल करनी ही होती है, थोड़ा बच के ही भीगना होगा, है ना। श्रोता ने ये कहा था कि और अगर कोई याद आए तो उसे भी भीगने देना, क्योंकि सावन का असली जादू यही है कि वह सब कुछ गीला कर देता है और गीले दिल सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। एक और श्रोता कहती है कि धड़कनों में बस गया है सांवरा, रूह में तन्हाई की राहें सजाया है, हर लम्हा उसकी यादों का पहला, दिल ने ख्वाबों में उसे अपना बनाया है, अब तो शाम सवेरे बस एक ही दुआ, प्यार के सफर में भी वो ही मिले। एक और श्रोता कहते हैं कि बाहर चल रही सावन की बरसात, साथ में विविध भारती का संग, हाथ में गरम कॉफी का कप, सामने प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़े। क्या बात है। आप तो असल मजा ले रहे हैं इन गीतों को सुनते हुए सुरीले सफर का। क्या बात है। एक और श्रोता कहती है कि

हमें तो सावन इसलिए अच्छा लगता है, एक तो चारों तरफ हरियाली और फूल बहुत ही प्यारे खिल जाते हैं, छोटे छोटे सब रंग के फूल और पक्षी भी इतने खुश नजर आते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन का पावन महीना, विविध भारती मुंबई की मेरी दीवानगी और आज सुरीला सफर प्रोग्राम, और मैं हूँ कश्मीर में, क्या बात है, वहीं से आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए बिल्कुल, और वहां पर है सुहाना मौसम, ऐसा भी वो बता रहे हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ, मैं वो गुजरे जमाने की एक राह हूँ, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूँ। फिलहाल आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत चश्मे बद्दूर फिल्म से, येसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज में, इंदु जैन का लिखा गीत, राजकमल का संगीत।

हमारे श्रोता कहते हैं कि पूजा जी, हमारे भोपाल में तो केवल बादल छाए हुए हैं, पानी तो सावन के महीने में भी तरसा रहा है, अब तो केवल विविध भारती का ही सहारा है। एक श्रोता कहते हैं कि वह क्या बात है, लता दीदी की सुरीली आवाज में मेरी पसंद का एक सदाबहार बेमिसाल गीत यहाँ बज गया है। उस समय हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब कार्यक्रम में अधिकतर गीत हमारी पसंद के आ जाते हैं। जी धन्यवाद। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन आते ही मन मयूर नाचने लगता है, फूलों पर पानी की बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे शबनम की बूंदें गिर रही हैं। ऐसे माहौल में काम करने में भी दिल नहीं लगता, दिल करता है बस ऐसे मौसम को देखते ही रहें। एक और श्रोता कहती हैं कि मौसम की पहली बारिश अपने साथ पुरानी स्मृतियों की एक पूरी किताब खोल देती है। वह चेहरा, वह बातें और उनके साथ बिताए हुए पल जो वक्त की धूल के नीचे छिप गए थे, अचानक धुले धुले से साफ नजर आने लगते हैं। बूंदों की छुअन उस स्पर्श की याद दिलाती है जो कभी रूह को छू गया था। यह याद कितनी गहरी होती है कि इंसान चाहकर भी इससे मुंह नहीं मोड़ पाता। यह महज एक इत्तेफाक नहीं है, सदियों से सावन को प्रेम, विरह और मिलन का महीना माना गया है। हम चाहे अपनी मसरूफियतों में कितने भी आगे निकल चुके हों, दिल के किसी कोने में आज भी वह मोहब्बत और उसकी कसक उतनी ही महफूज है। श्रोता कहती हैं कि सावन की ठंडी बौछारें जब जिस्म को छूती है तो रूह में सुलगती हुई किसी की यादें ताजा हो जाती हैं। बरसात का यह हसीन मौसम जहां एक तरफ प्यार की बेताबी बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ महबूब की दूरी सीने में एक मीठा मगर गहरा दर्द जगा देती है। एक और श्रोता कहते हैं कि बहुत सुंदर गीत स्वामी फिल्म से, क्या बात है, आपको अच्छा लगा, ये बहुत ही बढ़िया है। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन के महीने में ऐसा लगता है जैसे कहीं मोर नाच रहे हो, पंछी चहचहा रहे हो। ऐसे मौसम में दिल करता है कि कागज और कलम उठाएं और कोई कविता लिखें। ठंडी ठंडी हवाओं में कलम रुकती ही नहीं है, क्या बात। एक और श्रोता कहते हैं कि 50 बरस पहले की बात होगी, गांव में झूले पर झूलते सब मस्ती में कजरी गा रहे थे कि झूला टूटा और दूसरी ओर बैठे दो लोग कीचड़ में गिरे जो पहचान भी नहीं आ रहे थे, और इस ओर के तीन लोग नीचे इधर गिरे और चोटिल हो गए। सावन का मजा किरकिरा हो गया। लीजिए अब आपको सुनवा देते हैं अगला गीत, समाधि फिल्म से आशा भोसले की आवाज में मजदूर सुल्तानपुरी के बोल आर डी बर्मन का संगीत।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म अनजाना का यह रिमझिम के गीत सावन गीत में सावन की रिमझिम और दिल की तड़प एक साथ बोलती है। राजेंद्र कुमार की सादगी और बबीता की मासूम अदा इसे और भी खूबसूरत बना देती है। जी हाँ, प्यार जब बरसात में भीगता है तो हर बूंद एक गीत बनकर बन जाती है। वही बूंद रिमझिम के गीत सावन गायिका जादू बिखेर देती है। बिल्कुल सही। एक और श्रोता कहते हैं कि इस बरसात के मौसम में तो चाय

और पकौड़े का स्वाद बढ़ जाता है और आपके प्रोग्राम सुरीला सफर का स्वाद भी और बढ़ जाता है। दिल करता है कि गीत आते ही रहें और सावन की झड़ी लगी हुई रहे। एक और श्रोता कहते हैं कि पुरानी फिल्मों में सावन पर बने गाने बहुत ही सुमधुर होते थे। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। सावन के गीतों में सबसे पसंदीदा गाना उनका आया आया सावन झूम के। एक श्रोता कहती हैं कि मुझे आज भी याद है कि मैं और मेरा भाई स्कूल से लौट रहे थे और बहुत जोर की बरसात आ गई। वह पूरी सड़कों पे पानी पानी भर गया और हमें घर आने में बड़ी दिक्कत हुई। हाँ, बरसात के मौसम में ये दिक्कतें तो हमें देखना ही होती। एक श्रोता कहते हैं कि हमारे नागपुर में पिछले हफ्ते बहुत बारिश हुई लेकिन अब रुक गई है तो फिर से गर्मी बढ़ गई है। एक श्रोता कहते हैं, कभी कभी मैं सोचता हूं अगर मैं कोमा में चला जाऊं और कुछ भी सुनाई ना पड़े तो मुझे लगता है यही वो गाना है माँ सरस्वती का होगा जो मुझे होश मिला सकता है। अरे अरे, ऐसे तो नहीं कहिए। एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म जुर्माना का यह गीत सावन के झूले पड़े तुम चले आओ आनंद बख्शी द्वारा रचित, और जी हाँ, ये तो हमने आपको बता दिया है, एक अमर गीत है जो राग पहाड़ी पर आधारित है और यह गीत सावन के मौसम में प्रेयसी के अकेलेपन और अपने प्रेमी के प्रति अघात प्रेम व पुकार को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। क्या बात है, वाह क्या बात है। लता दीदी की सुरीली आवाज में मेरी पसंद का सदाबहार बेहतरीन गीत शानदार है। बहुत धन्यवाद इस गीत को सुनवाने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद संदेश के लिए। तुम चले आओ, तुम जो चले गए हो तो होगी बड़ी खराबी। यादों की महफिल कार्यक्रम में इस मजेदार गीत के लिए आप सभी का धन्यवाद। विविध भारती को ये धन्यवाद दे रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं, ये मौसम आया है इतने सालों में, आजा के खो जाएं ख्वाबों ख्यालों में। फिल्म का अजय ओम प्रकाश जी के सुपरहिट गाने आज उन्होंने सुने यादों की महफिल में और उन्हें बड़ा आनंद आया। एक और श्रोता कहते हैं कि पिया का नाम आते ही सांसों में एक सरगम सी बजने लगती है। बेचैनी और सुकून का मिला जुला रूप इस पल को जादुई बनाता है। पल के बिछाए रास्ते को देखना और हर आहट पर यह सोचना कि प्रिय आ गया है, इस रुत की सबसे हसीन सच्चाई है। जब सावन की यह रुत आती है तो प्रकृति भी श्रृंगार करती है। ठंडी हवाएं, खिले हुए फूल और फिजा का नशा प्रेमियों के दिल की धड़कन बढ़ा देता है। लंबे इंतजार के बाद प्रेमी से मिलने की घड़ी जब पास आती है तो मन का कोना कोना खुशी से झूम उठता है। क्या बात है, इसी बात पे आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। आरोप फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में माया गोविंद का लिखा गीत है। भूपेन हजारिका का संगीत बजाता है।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की जो बात समझी है इन्होंने कि चल रहे ऋतु चक्र के अनुरूप सावन की ही बातें हैं और इस दृष्टिकोण से आज की इबारत सराहनीय है, ऐसा वो कह रहे हैं। साथ ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि बहुत दिनों के एक नई उम्मीद है सावन के, दिल की बात घर से दूर, प्यार की मंजिल ये मोहब्बत की आवाज़, हर गीत मोती की माला, सभी सॉन्ग कुछ यादें ताज़ा हो गई है उनकी, ऐसा वो बता रहे हैं।

हमारी एक श्रोता कह रही है कि आज की सुंदर सी इबारत, सावन की रूमानी फुहारों, झूलों की मस्ती, किसी अपने की याद, आंखों में बसे सपनों और प्रेम के अटूट विश्वास का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। इसमें प्रकृति और प्रेम का ऐसा संगम है जो हर दिल को भीगा भीगा सा एहसास देते हैं। और उन्होंने ये गीत लिखा है, अब आपको सुनवा देते हैं ये गीत।

श्रोताओं, समय की कमी रहते हुए कार्यक्रम अब समाप्त होने की ओर है, तो ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन इन्हीं गीतों के साथ आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करने की दीजिए आज्ञा पूजा नारानिया को। लेती हूँ आपसे विदा। जी नमस्कार।

0: finishing the tournament with 23 points out of a possible 35. In badminton, Indian shuttlers Rakshita Ramraj and Ashmita Chaliha have stormed into the women's singles semi-finals of the Korea Masters in Asan today. Rakshita defeated compatriot Tanvi Sharma in the quarterfinals. She will now face fellow Indian Ashmita Chaliha in the semi-finals. Ashmita advanced to the semi-finals after stunning top seed Hina Akechi of Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes MSME Development Amendment Bill to address payment delays and simplify dispute resolution. Both houses adjourned to meet again on Monday amid opposition uproar. Prime Minister Narendra Modi meets newly joined MPs of NDA, expresses concern over repeated disruptions in Parliament. India and China discuss situation along line of actual control. Both sides agree to maintain peace and tranquility in border areas. President Draupadi Murmu presents National Handloom Awards 2025 at Rashtrapati Bhavan. Heavy rainfall lashes several parts of northern India. In chess, Grandmaster Arpagyananda wins Maiden St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने

भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर

0: और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
1: वेलकम तो है के साथ जो है और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
2: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
2: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
2: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँचे।
3: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूँ।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आंकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
2: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
3: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्रिट्स का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा

को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आरजू फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है। इस गीत की रचना की है हसरत जयपुरी ने और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी

0: आ रही हैं महबूबा महबूबा महबूबा विविध भारती पर 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम चलते रहे पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
2: ओ केटिको बर्फ बदन है।
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
3: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
1: जी,
3: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
1: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
2: निकला तो गड्डी लेके
1: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, भीगी रात फिल्म का गीत है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल है रोशन का संगीत।

0: स्टेशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
3: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
3: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सावन की घटा फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। विधानसभा में आज भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया।
1: अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 8,399 करोड़ 31,11,000 रुपए मात्र का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूँ।
0: इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्षी भाजपा और एनडीए विधायकों ने वेल में आकर जोरदार हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। इस अनुपूरक बजट पर आगामी 10 अगस्त को सदन में विस्तृत चर्चा और मतदान होगा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के 2 सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहने के बाद ही राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी।
2: कि झारखंड में भी लाखों बच्चे बैठे हुए हैं, हजारों बच्चे अनशन में बैठे हैं, धरने बैठे हैं। अब उन्होंने एक रस्म पूरा कर दिया कि भाई वीडियो संदेश दे दो। अरे आप में इतनी नैतिकता थी, आपकी बैसाखी पे तो सरकार चल रही है। छात्रों क्या डिमांड है भाई कि सीबीआई जांच करा दो, पैसे का इन्वॉल्वमेंट ईडी जांच करा दो, 16 लोग उत्पात सिपाही के दौड़ में मारे गए उनको 1-1 करोड़ रुपए दिलवा दो, यही तो मांग है। और जेपीएससी जेएससी के एग्जाम कैंसिल कर दो, यही तो मांग है।
0: डुमरी विधायक जयराम महतो ने जेपीएससी परीक्षा मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग करते हुए सरकार द्वारा अब तक छात्रों से वार्ता न किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

0: लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्तियों में लाखों रुपए के लेन देन का यह खेल अरबों रुपए का घोटाला हो सकता है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय से होनी जरूरी है।
1: सही से जांच हो तो प्रमाणित हो जाएगा, लाखों रुपए में सीटों को बेचा गया है, जो नियुक्तियां दी भी गई हैं उनको भी लाखों रुपए में बेचा गया है। सबसे बड़े नेताओं में से एक है राहुल गांधी, और अगर उनके स्टेटमेंट के बाद भी सरकार वार्ता नहीं कर पा रही तो उसको हम क्या कह सकते हैं? इनको कह सकते हैं कि अपने अभिमान में, और अभिमान से कुछ नहीं होता, इन्हें विनम्रता दिखानी चाहिए, छात्रों से संवाद करनी चाहिए, एक डेढ़ घंटे में समाधान हो जाएगा, सरकार को भी मालूम है मुद्दे क्या है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की पहल पर जेएसएलपीएस में नई एचआर पॉलिसी लागू की गई है, जिससे करीब 1300 नए पदों का सृजन होगा। इस नीति के तहत विभिन्न स्तर के कर्मियों के वेतन में 60% तक की भारी वृद्धि की गई है और पहली बार उन्हें ग्रेच्युटी तथा स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभ मिलेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज जमशेदपुर के माइकल जॉन प्रेक्षागृह में 13वें राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस समारोह का उद्घाटन किया। वीवर्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने नागरिकों से अधिक हस्तकरघा उत्पादों को अपनाने की अपील की।
2: राज्य की सांस्कृतिक पहचान की समृद्ध बनाता है। आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिक तकनीक, डिजाइन, विपणन और डिजिटल माध्यमों से जोड़कर जो उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराई जाए। सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक कार्य करने के दौरान मुझे बुनकर समाज के बीच जाकर उनकी समस्याओं को निकट से समझने का, हितों के लिए कार्य करने का मुझको अवसर मिला।
0: इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले बुनकरों को सम्मानित भी किया गया। रांची में आज भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत एलिम्को के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यह नया कार्यालय झारखंड सहित पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के 13 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने तत्काल चेतावनी जारी करते हुए अगले 3 घंटों के भीतर राज्य के 8 जिलों बोकारो, धनबाद, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, पाकुड़ और साहिबगंज में बादल गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

सभी सखियों को मुंशी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सावन मनभावन मौसम जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन झूम के गाता इटलाता सबको अपने रंगों में रंग देता है, अपने साथ लाता है उमंग उत्साह से भरे पर्व तीज त्योहार। हरियाली तीज, कजरी तीज और प्रेम का बंधन रक्षाबंधन जिसमें बसी होती है भाई बहन के प्यार की सुगंध। सावन में झूला झूलना, कजरी गीतों के मीठी तान। सावन में लगते हैं मेले जहां जाते नहीं हम अकेले। संग होती हैं सखियां सहेलियां, यादों वादों और मायके जाने का मौसम।

0: जहां से जुड़ी बचपन की हर याद ताजा हो जाती है। बहनों के सजने सवरने श्रृंगार करने का मौसम, आप इस मौसम में क्या खास तैयारी करती हैं और क्या करती हैं मेलों से खरीदारी? हेलो सहेली में अपनी यादों को साझा कीजिए हमारे साथ। फोन की घंटी बज उठी और देखते हैं कौन सी सखी होंगी जो करेंगी हमसे आज अपने मन की बात। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं बियामा मुल्ला बात कर रही हूँ मैडम।
0: जी
1: बेलगाम जिला गोकाक तालुक
0: जी
1: गांव कुंदरगी से।
0: जी
1: और मैं कर्नाटका से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अरे वाह, आप कर्नाटका से बात कर रही हैं। वहाँ की तो बहुत खास बात है, वहाँ पर बहुत घूमने वाली जगह है, बहुत अच्छी सी जगह है ना वहाँ पर?
1: बहुत अच्छी है मैडम, हरियाली वगैरह बहुत है यहाँ। आप आएंगी तो बहुत मजा आएगा।
0: आपको क्या क्या अच्छा लगता है वहाँ पर कर्नाटक की खास चीजों को घूमना देखना?
1: यहाँ गार्डन वगैरह है ना मैडम, वो हिड़कल बोल के गांव है
0: जी
1: और बेलगाम भी हमारा बहुत अच्छा है, वहाँ हम घूमने जाते हैं साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा।
0: जी दिया जी, देखिए ना, सावन का जो मौसम चल रहा है, सावन आ गया है, झूम कर इठलाता बलखाता, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए, सुनकर बहुत अच्छा लगेगा।
1: सावन की यादें मैडम बहुत अच्छा है, बरसात है, रिमझिम बारिश है,
0: और सावन में झूला झूलना, ये कैसा लगता है आपको?
1: बहुत मजा आता है मैडम। हमारे इधर मेला लगता था ना मैडम साल में एक बार,
0: हाँ जी,
1: तो हम अपने सखियों के साथ झूला झूलते थे
0: अच्छा।
1: और
0: और
1: बहुत मजा आता था।
0: जी अच्छा, मेले में आप जब जाती हैं ना, सावन के जो मेले होते हैं, वहां पर क्या क्या चीजें खरीदती हैं?
1: वहाँ मैडम मैं और मेरी कानों में की बाली और मेरा मेकअप का सामान।
0: अच्छा, दिया जी आप बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं रंग फिल्म से सुनना पसंद करूंगी मैडम, तुम्हें देखे मेरी आंखें।
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। तुम्हें

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बताइए आपका क्या नाम है?
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ, प्रेम
0: कहाँ से?
1: झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: बहुत प्यारा सा नाम है पूनम जी आपका। बिल्कुल, आपकी आवाज भी इतनी मीठी है कि लग रहा है कि पूरी चांदनी बिखर गई है हमारे प्रोग्राम में। जी, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा बोला आपने। तो देखिए, सावन का जो ये प्यारा सा मौसम चल रहा है, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए।
1: जैसे सावन महीना हो गया आ गया, तो मैडम जी आपको त्योहार व्रत जो है वो सब तैयारियां कर रहे हैं हम लोग, अभी तो स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही सावन आ जाता है तो एक मन में उमंग और तरंग आ जाता है मैडम जी, एक खुशी सी छा जाती है सभी के दिलो दिमाग में और बहुत ही अच्छा लगता है।
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम है मंजिल,
0: जी
1: उसमें लता मंगेशकर जी का गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा गीत है मेरे, यदि आप इजाजत दे तो थोड़ा मैं गुनगुना सकती हूँ।
0: बिल्कुल, आप गा के सुनाइए।
1: रे सावन

0: कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अंबिका विजय मारवाड़ी बोल रही हूँ, मैं शिरपुर जैन से बोल रही हूँ।
0: अंबिका जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ।
0: अंबिका जी, आपके और क्या क्या शौक हैं?
1: मैं रसोड़ा चलाती दीदी।
0: ये क्या होता है?
1: रसोड़ा चलाती, उसे खाना पकाना, रोटी पकाती।
0: अच्छा।
1: दाल सब्जी चावल खाने को 10-20 आदमी आते खाने को।
0: जी जी जी।
1: तो वो चलाती।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: मेरा बेटा, मैं, तीन जन है, हम बेटी की शादी हो गई।
0: अच्छा, ये बताइए कि आप कभी मेले घूमने गई हैं?
1: मेले घूमने में जाती ना, वो नांदेड़ जाती।
0: अंबिका जी, ये बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: चंदा मामा से प्यारा वो करते हुए पिक्चर में।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, हम इंदौर से बोल रहे हैं, शीतल भाटी।
0: शीतल जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शीतल जी, क्या आपने कभी सावन के मेलों को जा करके देखा है?
1: जी जी बिल्कुल देखा है, पर अभी नहीं। जैसे हम छोटे छोटे थे, हमारे मम्मी वगैरह हमको मेले में ले जाया करती थी। सावन के यहाँ पर झूले डलते थे, सावन के जो आज भी डलते हैं, पर अभी काफी टाइम से हमने देखा नहीं है। और जो पहले डलते थे उस प्रकार के अब नहीं डलते।
0: तो आप झूलती थी झूला?
1: जी जी मैं बहुत छोटी थी।
0: अच्छा, तो ये बताइए, और आप क्या करती हैं, क्या शौक हैं आपके?
1: जी मैं तो अभी फादर का बिजनेस है, वो संभालते हैं।
0: जी, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटा रहे हैं और बचपन की यादें भी आपने थोड़ी सी बताई हैं। तो
1: जी
0: बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज हमारी मम्मी का फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहेंगे हम, आया सावन झूम के।
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो, मैं नांदेड़ से बात कर रही हूँ, प्रगति मुड़े।
0: प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ।
0: गृहिणी हैं? तो गृहिणी हैं तो इसमें बहुत सारे काम भी होते हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं गृहिणी होने में। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है कि सबसे पहले हम कौन सा घर में काम कर लें?
1: काम हम तो सभी रोज करते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, वो तो करते ही है।
0: जी, अच्छा ये बताइए प्रगति जी, जैसे सावन का जो महीना चल रहा है, तो आपको किस रंग की साड़ियां पहनना पसंद है, खासकर सावन के मौसम में?
1: सावन के मौसम में हरी।
0: हरी? वाह क्या बात है, यानी कि हरी साड़ी, हरी हरी मेहंदी हाथों में लगाती होंगी, हरी चूड़ियां, है ना, बालों में गजरा।
1: हाँ,
0: किस तरह के फूलों का गजरा आपको अच्छा लगता है बालों में लगाना?
1: मोगरा।
0: क्या बात है, मोगरे की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है ना।
1: हाँ,
0: और आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं?
1: गुलाब, मोगरा, जाई जुई।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है सखी सहेली जो है आज मोगरे के फूलों से महक गया है ना प्रगति जी?
1: हाँ,
0: अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: हम आपके है कौन में से हम आपके है कौन, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: क्या बात है, तो चलिए प्रगति जी, हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, हम आपके हैं कौन फिल्म से।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: शांति भाई बोल रही हूँ भोपाल से। सहेली
0: शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। ये बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं, उसके कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: सब प्रॉब्लम अच्छा लगता है, जो भी आता है ना वो सब अच्छा लगता है।
0: अच्छा शांति जी, हम बात करने वाले हैं सावन के बारे में। ये बताइए कि बचपन में आपने कभी झूला झूला?
1: हाँ झूला ना,
0: जी
1: बहुत झूला झूला बचपन में, तो इतना झूला झूला के वो ही चेंज बता ही नहीं सकते।
0: आपने अपनी सखियों के साथ जब झूला झूला, तो उसकी कुछ यादें हो तो बताइए आप मुझे।
1: बहुत अच्छा लगता था, सखियों के साथ रहती थी, हर चीज की नॉलेज होती थी और बहुत साथ में रहती थी, ऐसा लगता था कि जीवन भर साथ में रहे तो अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, सखियों का साथ ऐसा होता ही है कि हम साथ में रहें। अच्छा, मेले में बहुत सारी दिखती ना चीजें, कि हरी हरी चूड़ियां, लाल हरी चूड़ियां दिखती
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: है ना
1: दिखती थी ना, जो पसंद आती थी हरी चूड़ी ज्यादा पहनती थी, वो हरी हरी टाइम रहती है ना,
0: जी।
1: तो हरियाली में वो ही अच्छी लगती थी।
0: अच्छा ये बताइए शांति जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: दिल मिल सितारों का आंगन होगा, यही मेरे को गाना सुनना है।
0: शांति जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, झिलमिल सितारों का आंगन होगा।

0: अंतराल के बाद सखियों से बातें करने आ गई है मंजरी वर्मा। कार्यक्रम चल रहा है हेलो सहेली। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सुचिका सुमित ततानी बोल रही हूँ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: सुचिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। नमस्कार, कैसा लग रहा है? आपने आज फोन लगाया है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका प्रोग्राम सुनती भी रहती हूँ और बहुत प्यारी प्यारी बातें, मीठी बातें, कुछ यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी,
0: जी
1: तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: आप रेडियो बहुत ध्यान से सुनती हैं लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बचपन की आदत है ना, हम लोग 1970s वाले हैं ना,
0: क्या बात है, मतलब
1: तो
0: 1970s
1: रेडियो,
0: की तो बहुत प्यारी प्यारी सी यादें भी होंगी आपकी।
1: बिल्कुल रेडियो तो उस टाइम के ऐसा है कि स्कूल सुबह विविध भारती से पूरा सुनना और स्कूल जाना वापस आना, अलग अलग पिक्चरों का गाना सुनना, रात तक देखना, और वो लाइव क्रिकेट मैच का जो टेलीकास्ट होता था, 26 जनवरी का परेड,
0: जी
1: तो एक बहुत प्यारी, मतलब एक अटैचमेंट तरीके का है रेडियो से।
0: जी तो बहुत अच्छी सी यादें आपने साझा करी। और ये बताइए कि सुचिका जी, हम बात करने वाले हैं आज सावन के बारे में, कि सावन का जो मौसम चल रहा है तो इसमें आप क्या क्या खास तरह से करती हैं घर में तैयारियां, और जो सावन के जो मेले लगते हैं ना, उनको देखा है
1: हाँ
0: आपने कभी जा करके?
1: बिल्कुल बिल्कुल, गुड़िया का मेला तो बचपन में, मतलब ये तो हमारे घर के बाहर ही, हम लखनऊ के बिलोंग करते हैं नरही से,
0: जी
1: तो बहुत बड़ा हमारे घर के बाहर ही गुड़िया का मेला लगता है, और वो अनर्सी की गोली तो मतलब बचपन को तरोताजा कर देती है, आज भी बिल्कुल सब कुछ नया नया लगता है, और वो झूले पेंगे मिट्टी के खिलौने, सौंधी सौंधी खुशबू, और मेरे बाबा का चीजें लाना,
0: जी
1: क्योंकि हम लोग ज्वाइंट फैमिली में से है
0: जी
1: तो बहुत मजा आता था, इतने भाई बहन, वो बात ही अलग है, छत पे सोना, बारिश में खेलना,
0: क्या बात
1: अलग ही
0: है।
1: मजा है वो।
0: और सावन में जो झूला झूलते हैं उसकी भी बड़ी यादें, जब पैंग दिया जाता है, पैंग दे देकर झूलते हैं, तो आपने कभी इस
1: बिल्कुल
0: तरह के झूलों को झूला है कि पैंग दी हो आपने भर भर के?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर के बाहर ही एक बहुत बड़ा पार्क होता था, हम लोग जितनी भी सहेलियां होती थी झूला लगाते थे, और बिल्कुल जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, उसको फूलों से सजा कर और एक एक करके पेंग लगाते थे इस तरीके से, और भीड़ बाहर होती थी।

0: मम्मी मेरे माँ लोग चाची लोग उन लोग सब हरी हरी चूड़ियाँ
1: जी
0: और साड़ी तैयार और सब सावन का सेज हरा लाल मतलब एक अलग ही छवि उभर के आती है।
1: क्या बात है, आपने इतनी अच्छी सी बातें करी। जो सावन के झूले की बात करी आपने कि फूलों से सजा होता था, तो बिल्कुल राधा और कृष्ण का वो झूला याद आ गया है ना।
0: कुछ कुछ वैसे ही हम लोग करते थे एक्चुअली।
1: जी
0: सारी बदमाश लड़की लड़कियां सब भाई बहन मिलके मोहल्लों के बच्चे जो खेलते थे क्योंकि तब
1: जी
0: तो ये गैजेट्स और ये सब तो होता नहीं था, तो वही आनंद और कि आज शाम को मिलेंगे तो आज, और सावन में जो ब्रेक होता था हम लोग की छुट्टियां भी होती थी तो बहुत मजा। और रेनी डे तो शायद आपने भी इंजॉय किया
1: जी
0: होगा
1: बिल्कुल, हमने भी
0: मतलब
1: इंजॉय किया है रेनी डे का।
0: बिल्कुल, तो बहुत मतलब आपने ऐसा टॉपिक लिया है कि मैं तो बोलती ही जा सकती हूँ।
1: अच्छा भी लग रहा है कि आप इतनी सारी बातें, इतनी यादें ताजा कर रही हैं। तो जो सावन में बहुत सारे त्योहार होते हैं, हरियाली तीज, कद्री तीज, और बाद में रक्षाबंधन आता है, तो भाई
0: हाँ
1: बहन से जुड़ा ये प्यारा सा त्योहार होता है, तो आप क्या तैयारी करती हैं? अभी से तैयारी करेंगी या जब रक्षाबंधन आएगा उसके पहले कुछ दिन पहले तैयारी करेंगी? अपने हाथ से राखी बनाएंगी भाई के लिए या
0: बिल्कुल
1: खरीदेंगी?
0: बिल्कुल, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और हमारे जॉइंट फैमिली में कजन शब्द बोलना मना है, मतलब हमने कभी यूज नहीं किया। तो हम
1: जी
0: लोग टोटल 13 भाई बहने हैं
1: क्या बात है।
0: और आप सोच नहीं सकते। और मेरी इकलौती बुआ होती थी वो दिल्ली से आती थी, पूरा पकवान बनता था मतलब, और हम लोग सब साड़ी पहनते थे और खाना बनता था, पूरा सजाया जाता था।
1: क्या
0: राखियां
1: बात है
0: हमने रेशम के धागों से, वो गाना नहीं है रेशम
1: जी,
0: के धागों से,
1: हाँ जी,
0: तो उसी में प्यार पिरो के भाइयों के लिए हम सारी बहने बनाते थे राखियां।
1: जी
0: और हमारे जो सबसे बड़े ताऊजी थे वो कंपटीशन करते थे कि किसका बेस्ट राखी होगा तो
1: क्या
0: उसको
1: बात है,
0: प्राइज मिलता था।
1: क्या बात है।
0: हम लोग एक डाइनिंग टेबल के ऊपर मिनी कॉन्सर्ट भी करते थे, आप यकीन नहीं करोगे, डांस होता था, प्रोग्राम होता था, बच्चों हम लोग सारे जो चिल्लड़ पार्टी होते थे।
1: क्या बात है, यानी कि बचपन की आपने इतनी सारी यादें ताजा करने की, मेरी भी यादें ताजा हो गई हैं। अच्छा सा माहौल बन जाता है जब सब लोग एक साथ होते हैं परिवार में, जब बड़ा
0: बिल्कुल,
1: परिवार होता है तो उसकी रौनक ही अलग होती है।
0: बहुत बहुत
1: जी
0: मजा आता था क्योंकि हमारे बाबा लोग 7 भाई और एक बहन, तो आप सोच सकती है क्या धमाल होता होगा।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, क्योंकि आजकल तो परिवार सिमटते से जा रहे हैं, छोटे से होते
0: हाँ
1: जा रहे हैं। सुचिका जी ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है?
0: मेरे घर में ससुराल में सास ससुर हैं
1: जी
0: और देवर देवरानी, लोग अभी दिल्ली में मतलब वो भी गाजियाबाद की तरफ ही रहते हैं। तो बस हम लोग 4-5 जो ना, मेरा बेटा है वो अभी लॉ
1: जी
0: कर चुका है, अभी अभी हाल ही में कृपा है ठाकुर जी की नौकरी पे लगा है, तो
1: क्या बात
0: बस
1: है,
0: छोटा सा प्यारा सा परिवार है।
1: बहुत अच्छा लगा सुन करके। अच्छा बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: मैं सावन के महीने में सजना को याद ना करूं ऐसा तो हो नहीं सकता।
1: नहीं बिल्कुल।

फिल्म सौदागर का ये गाना। तो चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। आप ऐसे ही अपने सजना के लिए सजती संवरती रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अर्चना गुप्ता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: अर्चना जी, आपने हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन लगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपका फोन लगा?
1: अरे आपको तो मैं जनवरी से ट्राई कर रही हूँ। मैं सोची थी मैं विश करूंगी हैप्पी न्यू ईयर,
0: जी
1: उससे करते करते सावन आ गया, अब तो पलका मिल ही गया।
0: मिल गई ना, तो देखिए सावन चल रहा है ना, तो पहले तो हम लोग एक दूसरे को सावन की ही शुभकामनाएं देते हैं, है ना?
1: आपको भी, जी,
0: तो अर्चना जी,
1: आपको भी बहुत बहुत बधाई हो सावन की,
0: अर्चना
1: जिंदगी हरी भरी रहे आपकी।
0: जी, अर्चना जी, ऐसी ही बहुत प्यारी सी शुभकामनाएं आपने मुझे दी, और हम भी देना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में हरी भरी खुशियां रंग बिखेरे तरह तरह के, और बहुत
1: जी,
0: सुखमय जीवन हो आपका। बताइए अर्चना जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ और घर से मैं थोड़ा सा मिक्सचर, नमकीन और गुजिया इसका काम करती हूँ,
0: अच्छा,
1: जो
0: ये
1: बहुत अच्छा चलता है।
0: बहुत
1: अभी फेस्टिव सीजन है ना, तो

0: भी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। ये रक्षाबंधन से शुरू होकर दिवाली तक मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, बाकी समय तो चलता ही है बट अभी त्योहार बहुत ज्यादा रहते हैं ना, तो स्पेशली गुजिया का मेरा बहुत डिमांड रहता है।
1: अच्छा, तो गुजिया आप किस तरह की बनाती हैं, सूजी की या मावे की?
0: नहीं, मावे की,
1: उसमें कुछ भी मिलाती नहीं है, सूजी भी नहीं मिलाती है ना?
0: नहीं कुछ नहीं, सिर्फ शक्कर, मावा और ड्राई फ्रूट्स रहता है।
1: क्या बात है। जो आप नमकीन बनाती हैं, उसमें कौन सी खास नमकीन आप बनाती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है और सबसे ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं?
0: चाकोली है, वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि मेरा थोड़ा डिफरेंट रहता है।
1: जी बहुत,
0: हाँ, तो वो बहुत ज्यादा चलता है, पसंद किया जाता है।
1: ये खाना जो बनाने का शौक है, ये आपको बचपन से था या बाद में आपको हुआ?
0: अरे नहीं, मैं तो किस उम्र से खाना बना रही हूँ मेरे को ये भी नहीं मालूम। मेरी मम्मी बचपन से ही काम करवाती थी तो वो आदत पड़ गया था, और खाना खाने का शौक और बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो वो फिर हमारी हॉबी बन गई।
1: क्या बात है। यानी देखिए,
0: बड़े हो गए हैं उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया है और भगवान की दया है कि बहुत अच्छा चल रहा है।
1: देखिए, माता पिता का जो भी सिखाया हुआ होता है ना काम, बच्चों को जो बचपन में सिखाते हैं वो अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि शादी होगी, दूसरे घर जाएंगी तो वहां पर उनको किसी काम में दिक्कत ना हो। तो देखिए, उनका जो सिखाया हुआ था आपको हुनर, वो आज आपके काम आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है।
0: काम आ रहा है ये चीज।
1: तो आपने अपने परिवार में अपने बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा दी?
0: नहीं, बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं पर हाँ, अभी जैसे गुजिये का टाइम है तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उसमें जब तक दो तीन लोग नहीं लगेंगे ना तो नहीं हो पाता। एक एक दिन में 10 किलो 15 किलो बनाना रहता है।
1: बिल्कुल
0: दो
1: सही
0: लेडीज
1: बात है।
0: भी हैं, हाँ दो लेडीज भी हैं, तो मेरी बेटी मेरी भी बहुत हेल्प करती, मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं।
1: क्या बात है। यानी सावन में आपने गुझियों की याद दिला दी, महक हमारे यहाँ तक आ गई है उड़ करके। अर्चना जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। और
0: मेरा तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग की आवाज इतनी मीठी लगती है ना
1: जी
0: कि मैं क्या बोलूँ, ये पूछिए मत।
1: धन्यवाद। अच्छा ये बताइए अर्चना जी, सावन की कौन कौन सी यादें हैं जो आप मुझे बताना चाहेंगी?
0: ऐसे तो बहुत सारी हैं, पर हमको अपने शादी के बाद का पहला सावन याद है, जब मैं मायके गई थी, अपने हाथ से भाई को राखी बांधी थी। 30 साल शादी को हो गए, उसके बाद ये चांस दोबारा नहीं मिला, तो वो यादगार रहा है मेरे लिए।
1: जी, आप फिर से वापस अपने मायके जाइए और अपनी यादों को फिर से ताजा कीजिए, तो वो बहुत ही अच्छी सी यादें होती हैं, है ना?
0: वो यादें होती हैं पर अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को देखना है तो हो नहीं पाता है।
1: जी बिल्कुल, हम समझ सकते हैं ये चीज। तो सावन में जब मेले लगते हैं, वो मेले आपने जाकर देखे हैं?
0: बहुत देखे हैं, बहुत मजा आता है। उसके लिए तो स्पेशली समय निकालती हूँ कि नहीं मेरे को जाना है, उसमें जाने से ऐसा लगता है मेरा बचपना आ गया वापिस।
1: और वहां पर
0: और कुछ नहीं रहता था तो मेला देखना है, कोई भी मेला लगाओ कहीं भी लगाओ तो जाना है देखने, मेला देखने जाना है, प्रदर्शनी देखने जाना है। वो जो झूले वगैरह रहते थे, झूलने का जो आनंद आता था ना, वो सब चीजें तो अब याद करके ही रह जाते हैं, पर लगता है तो मैं तो जरूर जाती हूँ।
1: अच्छा, मेले में जो दुकानें लगती है, वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं जो घरों में उपयोग की जाती, बच्चों के खिलौने होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है, हार माले चूड़ियां सब होती हैं। तो आप उनमें से क्या क्या चीजें ज्यादा खरीदा करती थी उस समय?
0: मैं किचन का सामान ज्यादा देखती थी, ध्यान उसी पे ज्यादा जाता
1: क्या
0: था।
1: क्या बात है, हम समझ सकते हैं कि आपका शौक बचपन से जो किचन में आपने काम किया है, तो
0: में, हाँ,
1: जी
0: क्या है क्या नहीं है, अच्छा इस बार ये चीज नया आया है पकड़कर। वो जो पहले तो बड़े बड़े हम लोग के यहाँ अदरक वगैरह घिसने वाले आते थे, अब ये छोटे छोटे मिलने लगे हैं, तो वो सारी चीजें जैसे मेले में दिखती थी ना तो तुरंत खरीदते थे। और अभी भी किसी भी मेले में जाएंगे तो कुछ मैं नहीं देखूंगी, सबसे पहले गुजिया का सांचा ढूंढती हूँ।
1: क्या बात है, यानी डिजाइनर सांचे आप ढूंढती हैं गुजिया बनाने के लिए, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा ध्यान उसी पे जाता है।
1: बड़ा अच्छा लगा अर्चना जी आपसे बातें करके, खूब सारी यादें ताजा हो गई। तो चलिए बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
0: बरसात मूवी का, बरसात में हमसे मिले तुम, सजन तुमसे मिले हम बरसात में।
1: बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने चुना है मौसम के अनुरूप, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है? अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं पूनम जैन बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए पूनम जी, आपके कौन कौन से शौक हैं?
1: म्यूजिक मेरा सबसे पहला शौक है, मुझे
0: जी
1: गाने गाना सुनना बहुत पसंद है, साथ में मुझे कुकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है।
0: क्या बात है। और पूनम जी, आपको रेडियो सुनना पसंद है?
1: जी बिल्कुल, बहुत पसंद है।
0: और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे दो बेटे हैं, दोनों लॉयर हैं,
0: जी
1: मेरे हस्बैंड, और बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, एक बिटिया है, मेरी डॉटर इन लॉ।
0: जी क्या बात है। पूनम जी, ये बताइए, जो सावन का महीना है, इसकी यादें आपके जीवन में किस तरह से जुड़ी हुई हैं?
1: सावन का महीना मेरे लिए सिर्फ महीना नहीं है, ये भावनाओं का त्योहार है। चारों
0: जी
1: तरफ हरियाली, झूले, मेहंदी, गीत और भगवान शिव की भक्ति।
0: जी
1: सावन के आते ही मन में उमंग भर जाती है। जैसे अब तो खैर नहीं होता, लेकिन पहले सावन में हमेशा प्रेयर जाती थी, वहां पर सबके साथ, मम्मी पापा भाई बहनों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता था।
0: और जयपुर में किस तरह से सावन आप सभी सखियां मिलकर के मनाती हैं?
1: सावन का महत्व मतलब झूले की तरह है, झूला सावन की पहचान है। कहते हैं ना, झूला झूलने से मन हल्का होता है, प्रकृति से जुड़ाव होता है,
0: जी।
1: पेड़ों पर रंगीन झूले और उन पर सहेलियों के साथ गाना, यही तो सावन की खूबसूरती है।
0: और वहां की क्या खास डिश होती है जयपुर की?
1: खरीद के तो जैसे हम घेवर लाते हैं, यहाँ के फेमस है सावन में घेवर, और गुलाब जामुन, पूरे
0: जी
1: खीरे बनती है, और घर में हम दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। सावन मतलब दाल बाटी चूरमा का बहुत है जयपुर के अंदर ना, दाल
0: जी
1: बाटी चूरमा बहुत फेमस है।
0: दाल बाटी चूरमा जो है, जो बाटी होती है, वो तो कई तरह की बनती है ना?
1: हाँ, मसाले वाली बाटी बनती है, आलू की बाटी बनती है, सादा बाटी बनती है।
0: जी, और मेवे वाली बाटी भी तो बनती है वहां पर?
1: हाँ बिल्कुल, अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल के, मेवा डाल के वो भी बनती है।
0: जी पूनम जी, आपने कभी वहां पर जो मेले लगते हैं, वहां पर जाके आपने देखा, एंजॉय किया सखियों संग?
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर जयपुर में तीज माता की सवारी निकलती है, बहुत
0: जी
1: भव्य सवारी निकलती है, बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह, तो उसको हम देखने जाते हैं सिटी में।
0: क्या बात है, उसकी खूबसूरती देखते बनती होगी, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: बताइए पूनम जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: ये गीत सुना दीजिए, अच्छे सजन सावन में, ये मुझे बहुत पसंद है।
0: पूनम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: सखियों से बातें करते हुए वक्त तो पंख लगाकर उड़ गया और दे गया बहुत सारी यादें। चलते चलते आपको बता देते हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से 12 बजे तक रिकॉर्डिंग होती है। प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे हेलो सहेली कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली कार्यक्रम। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002466 2, एसटीडी 022। अब इसका दूसरा नंबर भी नोट कीजिए। फोन नंबर है 2867 0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 2867 0288, एसटीडी कोड है 022। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। और जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग। हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, स्वीकार कीजिए मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। विधानसभा में आज भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्षी भाजपा और एनडीए विधायकों ने वेल में आकर जोरदार हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के 2 सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहने के बाद ही राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर कल और परसों यानी 8 और 9 अगस्त को मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र भारतीय नागरिक फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से इस अभियान का लाभ उठाने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLBC के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर समिति के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की पहल पर JSLPS में नई HR पॉलिसी लागू की गई है, जिससे करीब 1,300 नए पदों का सृजन होगा। इस नीति के तहत विभिन्न स्तर के कर्मियों के वेतन में 60% तक की भारी वृद्धि भी की गई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नहीं प्यार का तड़का। स्वाति हंसती हुई घर का ताला बंद करने लगी। रोज ही दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकलते थे। स्वाति पहले अभिनव को उसके ऑफिस पर ड्रॉप करती, फिर अपने ऑफिस चली जाती। रोज की तरह दोनों साथ निकले और अपने अपने ऑफिस चले गए। दिन की शुरुआत जितनी अच्छी थी, ऑफिस पहुंचते ही स्वाति का उतनी ही बुरी खबर से सामना हुआ। बीती रात उसका एक सहकर्मी आलोक नशे की हालत में ऑफिस की बालकनी से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई थी। ऑफिस में पुलिस और मीडिया का जमावड़ा था। सबके बयान लिए जा रहे थे। मीडिया वाले भी हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक हुई इस दुर्घटना से स्वाति स्तब्ध रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो आलोक कल दिन भर अपनी तरक्की को लेकर खुश था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, उसके साथ ऐसा कैसे हुआ होगा। वो न सिर्फ दुखी थी बल्कि बहुत बेचैन भी थी। इसी उधेड़बुन में वो गलती से लाइव न्यूज करते रिपोर्टर्स के फ्रेम में आ गई। हड़बड़ाई हुई स्वाति ने संकोच में खुद को लेडीज बाथरूम में बंद कर लिया। आलोक ने ऑफिस में नशा कैसे किया? आखिर कौन था उसके साथ? उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं सवालों के जवाब बाहर मीडिया और पुलिस भी ढूंढ रही थी। जिंदगी किसी भी पल बदल सकती है, इसका वाकई कोई भरोसा नहीं।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: स्वाति ने अपने चेहरे को धोया और बाहर की तरफ बढ़ी कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन उठा लिया। हेलो, तुम ठीक हो? कौन? स्वाति? स्वाति वत्स बोल रही हो ना? हाँ, मैं स्वाति ही बोल रही हूँ। आप कौन? पहचाना नहीं? मैं निमिष राठौड़। निमिष? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले निमिष? बिल्कुल सही, तो तुम्हें याद हूँ मैं। कैसी बात कर रहे हो, हम फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। अरे ऐसे जुड़ने का क्या फायदा जब बस जन्मदिन और नए साल की शुभकामना ही देती हूँ। आलोक की मौत का सदमा स्वाति को कई दिन तक रहा, लेकिन निमिष के रूप में उसे उस वक्त एक फौरी आराम मिल गया। निमिष और स्वाति ने 15 साल पहले साथ में ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। दोनों के बीच कभी ज्यादा दोस्ती नहीं थी। फेसबुक के आने के बाद सभी लोगों ने अपने पुराने दोस्तों और सहपाठियों को ढूंढ लिया था, और तभी से स्वाति और निमिष भी वहां जुड़े थे। निमिष एक नामी न्यूज चैनल का हेड था और स्वाति को अपने चैनल की लाइव न्यूज के फ्रेम में देखकर ही उसे कॉल किया था। हालांकि कॉलेज में भी दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं थी, लेकिन स्वाति को कॉलेज में भी उसका इंटेलिजेंस अच्छा लगता था। उसकी वाणी और स्वभाव में हमेशा ही नरमी रहती। कुछ देर निमिष से बात करके उसका दिमागी बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अब जबकि निमिष ने स्वाति के चेहरे की परेशानी कुछ सेकंड्स के वीडियो में ही समझ ली थी, तो उसे निमिष की परवाह अच्छी लग रही थी। शायद ये परवाह भी उसके स्वभाव का ही हिस्सा थी। कुछ दिन के बाद लगभग हर हफ्ते 10 दिन में निमिष का फोन आता या वो उसे कॉल करके आलोक के केस के बारे में पूछ लेती। धीरे धीरे पुराने सहपाठियों के बीच उनके वर्तमान की जानकारी साझा होने लगी। दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स के बारे में एक दूसरे को बताया। भाई, तुम्हारी और अभिनय की लव मैरिज है? निमिष ने पूछा। उससे भी बढ़िया, हमारी फ्रेंडशिप मैरिज है, स्वाति ने उसे नया टर्म बताया। यानी तुम्हें किसी से अब तक प्यार नहीं हुआ? निमिष ने उत्सुकता से पूछा। स्वाति ने गर्व से कहा, मित्रता प्रेम की पराकाष्ठा होती है, और ये किस महापुरुष ने कहा है? निमिष ने झट से पूछा। ये एक महान स्त्री ने कहा है, स्वाति ने खिलखिला के जवाब दिया। हाँ, होगी कोई तुम जैसी स्त्री जिसने प्रेम को सही से जाना ही नहीं। निमिष संपादक था, शब्दों के जाल को बुनना उसे खूब आता था। अच्छा, सबकी प्रेम की परिभाषा अलग भी तो हो सकती है। मुझे अभिनव जैसा जीवन साथी मिला जिसने मुझे सहज रहने दिया, कभी बदलने की कोशिश नहीं की, उससे प्रेम अपने आप होता चला गया। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता वो दोस्ती नहीं प्रेम है? निमिष ने फिर से सवाल किया। अब स्वाति ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी प्रेम कहानी और शादी अमर रहे, इतना ही मानवता के लिए काफी है। भाई, मेरी तो अरेंज मैरिज है, निमिष ने बताया तो स्वाति ने झुंझला के कहा। वाह, और ये प्रेम पर तब से ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, प्रेम बार बार नहीं होता। निमिष कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। मतलब तुम्हें किसी और से प्यार, तो शादी क्यों नहीं की? स्वाति ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, किया था, पर उससे कह नहीं पाया। कई साल उसे ढूंढा, उसका इंतजार किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उम्र निकल रही थी, फिर पूजा का रिश्ता आया और पेरेंट्स ने पक्का कर दिया। इसलिए समझता हूं कि बिना प्यार की शादी कैसे होती है। उसकी शादी को 3 साल हुए थे, जबकि स्वाति की शादी को 11 साल होने को थे। स्वाति आगे पूछना चाहती थी, लेकिन अपने रिश्ते की मर्यादा में उसके और उसकी पत्नी के विषय में कुछ पूछ न सकी। लेकिन उसका दिमाग अब यह जानना चाहता था कि निमिष को किससे प्रेम हुआ था। क्या वो उस लड़की को जानती है? कहीं साथ में पढ़ने वाली कोई लड़की तो नहीं थी?

हफ्ते 10 दिनों में होने वाली कॉल अब रोज होने वाली बातों में बदल गई। निविश को सही सवाल पूछना आता था। स्वाति बेखटके हर जवाब देती। उसके मन की हर परत अब निमिष को पता थी। निमिष कम बोलता था। जब भी स्वाति खुद से पूछे सवाल का रुख उसकी तरफ कर देती तो वो उदास हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसकी शादी बस एक बंधन, एक जिम्मेदारी हो। उल्टे स्वाति और अभिनव की शादी और सामंजस्य वो सराहता, लेकिन बूझे स्वर में। ऐसे में स्वाति ने उससे अपने पति और रिश्ते की बात करना बंद कर दिया। अब वो बाकी विषयों पर बातें करते, जैसे राजनीति, देश, दुनिया, फिल्म, गाने और खाना भी। स्वाति और निमिष के बीच फोन पर बातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। जब निमिष अपने ऑफिस के लिए निकलता था, उस वक्त तक स्वाति अपने ऑफिस पहुंच चुकी होती थी। वो जब घर से निकलता तो उसे फोन मिला लेता, और जब तक अपने ऑफिस पहुंचता तब तक स्वाति से बात करता रहता। कई बार तो वो रास्ते में ही होती और निमिष का फोन आ जाता। स्वाति ने अभिनव को निमिष के बारे में बता दिया था। उससे बात करके जो भी पुराने यादें लौटती, उनकी कहानी वो अभिनव को रोज सुनाती। अभिनव को स्वाति के दोस्तों से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। कॉलेज के दिनों की पुरानी बातें हो या रोजमर्रा की बातें, निमिष और स्वाति के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। एक दिन निमिष ने स्वाति को बताया कि जितनी बातें वो उससे करता है, उतनी बातें उसने कभी भी किसी और से भी नहीं की है, ना अपने परिवार में, ना ही पत्नी के साथ। सच में यार, पति पत्नी की क्या बात कर रही हो? मुझे तो लगता है मैंने कभी भी किसी से इतनी बातें नहीं करी जितनी मैं तुमसे करता हूं। कभी सोचा है कि कैसे तुमसे इतना सहज हूं कि बिना किसी लाग लपेट के हर बात कह पाता हूं? निमिष जानना चाहता था कि स्वाति उसकी जिंदगी में अपनी खास जगह को पहचान रही है या नहीं। अच्छा, लेकिन मैं तो हमेशा से इतनी बातों नहीं हूं। मैं तो रोज की बात रोज ना करूं तो पेट में दर्द होने लगे। वो हंसने लगी। स्वाति तो स्वाति थी, अल्लड़ और हिंट न देने वाली। हां, तुम तो कॉलेज के जमाने से ऐसी ही हो, लेकिन तुम्हारी संगत मुझे बदल रही है, वरना मैं अपने मन की बात किसी से नहीं बांटता। उसने एक बार फिर से अपनी जिंदगी में स्वाति की अहमियत और बदलाव को रेखांकित किया। घुटन नहीं होती? स्वाति ने उससे अचानक पूछा। निमिष तैयार नहीं था। उसे लगा कि स्वाति पूछेगी कि ऐसा क्यों है कि निमिष उसके साथ इतना सहज है, या शायद ये कि उसकी संगत के निमिष पर और क्या असर हो रहे हैं। लेकिन उसने पूछा उसके ना बात करने की घुटन के बारे में। सवाल से निमिष ने ये तो जाना कि स्वाति को उसके स्वभाव को लेकर उत्सुकता भी है और उसकी चिंता भी। उसने थोड़ा सोच

आदत है सब अपने अंदर रखने की, खुशी हो या परेशानी, सब बस हमेशा अंदर ही रहा। इसीलिए मैं तुम्हारे जैसा एक्सप्रेसिव नहीं हूं। चलो तुम्हारे बंद ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या निकलेगा। स्वाति ने पूरे जोश से निमिष की जिंदगी के बारे में जानने और उसके अकेलेपन को दूर करने का बीड़ा उठा लिया। उस रोज एक लंबी मुस्कान ने निमिष की आंखों को प्रदीप्त कर दिया। स्वाति को अब स्पेशल फील हो रहा था। निमिष वाकई मितभाषी था और वो अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कर पाता था, जबकि स्वाति के साथ वो हर बात बिना किसी तकल्लुफ के साझा कर लेता था। उसे खुद पर थोड़ा नाज हुआ, लेकिन जब भी निमिष इस बात पर जोर देता, स्वाति ऐसा दिखाती जैसे ये कोई खास बात नहीं है। दिल ही दिल में उसे यह एहसास था कि उन दोनों के बीच कुछ तो बदल गया था। आखिर उनका आपस में गजब का सामंजस्य था। इतने सालों के बाद वो संपर्क में आए थे। सिर्फ फोन और चैट पर बात करते हुए कुछ ही हफ्तों में वो दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात, यहां तक कि भाव भी समझ जाते। स्वाति को जो अब तक रोमांचक लग रहा था, वो अब उसे अजीब लगने लगा। वो जानना चाहती थी कि क्या ये वाकई अटपटा है या स्त्री कंडीशनिंग है जो उसे ये आत्मीयता और अंडरस्टैंडिंग गलत लग रही है। वो जानना चाहती थी कि क्या उसकी तरह निमिष को भी उनका मेल जोल

0: निमिष जानता था कि स्वाति के प्रति बढ़ता लगाव दरअसल उसका खोया हुआ प्रेम ही है। वो स्वाति को कॉलेज के जमाने से पसंद करता था, लेकिन संकोच में उसे बता नहीं सका। ग्रेजुएशन के बाद स्वाति आगे पढ़ने दूसरे शहर चली गई और वो कभी उसे ढूंढ नहीं सका। 8 साल बाद जब फेसबुक पर स्वाति मिली तो उसकी शादी हो चुकी थी और परिवार में एक बेटी भी थी। फेसबुक पर स्वाति से इतनी बात करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। उस दिन घबराई हुई स्वाति को अपने चैनल की स्क्रीन पर देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने कॉलेज ग्रुप से लिए हुए उसके नंबर पर पहली बार कॉल किया था। उसे पता नहीं था कि बातों का सिलसिला उसके अंदर की चाहत को फिर भड़का देगा। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, निमिष ने कहा। अचानक? ठीक तो हो? स्वाति को चिंता हुई। बोलो ना, मिलोगी? उसने विनती के स्वर में पूछा। हां, क्यों नहीं, इस इतवार को घर पे आ जाओ। स्वाति ने सहज ही निमंत्रण दे दिया। घर पर नहीं, निमिष ने साफ मना कर दिया।
1: क्यों, अभिनव से नहीं मिलना, बल्कि पूजा को भी लेते आना,
0: स्वाति ने फिर से समझाया। नहीं यार, तुमसे मिलना है, किसी और से नहीं मिलना। अभी परिवार को दोस्ती के बीच में मत लाओ ना, निमिष ने झुंझला कर कहा। अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों मिलते हैं। स्वाति उसकी मनोस्थिति समझना चाहती थी। करीब 6 हफ्ते फोन पर बात करने के बाद निमिष और स्वाति कॉलेज के

0: बाद पहली बार रूबरू मिले। निमिष आज भी वैसा ही था, जबकि कॉलेज के जमाने में सीख सी दिखने वाली स्वाति अब भरी पूरी महिला हो गई थी। उसका वजन उस पर फबता था, उनका साथ कपूर और आग जैसा था। स्वाति की हंसी की खनक और बातों की खुशबू से निमिष का मन महक रहा था। स्वाति से मिलकर वो जान गया था कि अपने दिल की बात बताना या पुरानी चाहत का राज खोलना स्वाति को दोबारा खो देने जैसा होगा, क्योंकि वो जितनी बात करती उसमें आधे से ज्यादा बातें या उदाहरण उसके पति अभिनव के बारे में होते। स्वाति अभिनव के साथ खुश थी। निमिष उसके दिल में अपनी छोटी सी जगह को खोना नहीं चाहता था। उनकी बातचीत की तरह उनके मिलने का सिलसिला भी बढ़ता गया। कभी निमिष उसके ऑफिस की तरफ आ जाता और उसके साथ कॉफी पी लेता, कभी लंच पैक करवा के साथ ही ले आता और दोनों गाड़ी में ही बोलते बतियाते लंच करते। ऐसा लग रहा था कि अपनी भावनाओं और परिस्थितियों दोनों पर अब उनका कोई बस न रह गया हो। जितनी देर वो स्वाति के साथ रहता उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक कायम रहते। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो पूरी तरह से स्वाति के प्यार में डूबा है। दूर से देखने वाले भी उनके बीच का स्पार्क महसूस कर सकते थे। ऐसे में ये बात उन दोनों को खुद महसूस न हो रही हो यह संभव नहीं था। बकौल निमिष, वो इस अनाम से प्यारे रिश्ते में कोई सवाल नहीं चाहता था और अपने बीच तेजी से बदलती भावनाओं को वो जानबूझकर अनदेखा करने लगा। स्वाति को निमिष की आंखों का प्यार और आकांक्षाएं साफ दिख रही थीं। मजाक मजाक में वो उसे कई बार प्यार में न पड़ने की चेता चुकी थी। निमिष भी उसकी चेतावनी को हर बार काश ऐसा ही हो जाए बोलकर हंसी में उड़ा देता। वो जानता था कि स्वाति को जिस प्यार के होने का डर सता रहा था वो पहले से ही उसके जीवन का सच था। शायद उसे खुद भी प्यार में पड़ जाने का डर हो।
1: गीतों भरी कहानी जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: आप सुन रहे हैं गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह। आइए सुनते हैं आगे की कहानी।
1: निमिष का शक सही था। स्वाति समझ रही थी कि दोस्ती और उनके वर्तमान समीकरण के बीच बहुत फर्क आ चुका है, और ऐसा सिर्फ निमिष की तरफ से नहीं था। उसने स्वयं भी यह समझ लिया था कि अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति बढ़ता उनका आकर्षण भी है। ऐसे में वो इस बढ़ती लत को यहीं रोक देना चाहती थी। निमिष, हम दोनों खुशहाल परिवार में रहते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए कि इस दोस्ती से अभिनव या पूजा को इनसिक्योरिटी ना हो। तुम ना ओवरथिंकिंग की दुकान हो यार, बेवजह परेशान होती रहती हो, इतना मत सोचो। निमिष ने समझाया कि उनकी दोस्ती में उनके पार्टनर्स के लिए उसे कोई धोखा नहीं दिख रहा है। यार तुम सोचती बहुत ज्यादा हो, अगर दोस्ती से ज्यादा है तब भी ये कोई चीटिंग नहीं है, हमें भी खुश रहने का हक है। अपने पसंद

0: पसंदीदा इंसान के साथ समय बिताना अगर किसी को धोखा लगे तो लगा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निमिष, ये दोस्ती नहीं है, ये जो तुम्हारी आंखों में दिखता है उससे मुझे घबराहट होती है। मैं अभिनय को धोखा नहीं दे सकती। बात को समझो, हमें मिलना फौरन बंद करना होगा। प्यार व्यार में पड़ जाओगे तो बस, हमें बात भी कम करनी चाहिए। स्वाति के लहजे में चिंता थी।
1: तुम्हें मुझसे प्यार हुआ क्या?
0: नहीं ना, क्या ही फायदा तब इतना सोचने का। निमिष कह नहीं रहा था बल्कि पूछ रहा था। फिर भी यह ठीक नहीं है, किसी से मानसिक लगाव भी इमोशनल चीटिंग ही है। स्वाति ने अपना स्टैंड क्लियर किया।
1: पागल मत बनो स्वाति, ये जो वक्त मैं तुम्हारे साथ जीता हूं वो मेरे पूरे दिन की खुराक है। मुझे नहीं पता तुमसे मिलने से पहले मैं कैसे जिया। मुझे बस इतना पता है कि मेरे नीरस जीवन में जो भी रंग है उसकी वजह यही समय है जो मैं तुमसे बात करते हुए, तुम्हें देखते हुए बिताता हूं।
0: निमिष ने कातर आंखों से स्वाति से उसका चैन न छीनने की गुजारिश की।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

स्वाति समझ रही थी निमिष उससे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहता है, लेकिन स्वाति से दूर होने का डर उसे रोक रहा था। उस रोज स्वाति जब उससे मिलकर अपने घर के लिए निकली तो उसने निमिष को कोई वादा नहीं किया, बल्कि उसे सांत्वना देकर चली गई। धीरे धीरे उसने निमिष के कॉल उठाना कम

हार से सिर्फ निमिष दुखी था। दुखी तो वो खुद भी थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी ही तरह निमिष भी शादीशुदा है। वो जितना अपने और निमिष के रिश्ते को पड़ताल करती, उसे अपना कदम सही लगता। स्वाति अभिनव से प्यार करती थी, उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी और वो साथ में खुशहाल भी थे। फिर क्यों उसने निमिष को इतना आगे बढ़ने दिया? मुझे न प्यार की तलाश है न प्रेमी की। कैसे संभव है एक इंसान के प्रेम में होते हुए किसी दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाना? क्या मैं आकर्षित हूं या मुझे भी निमिष से प्रेम हो रहा है? वो जितना खुद को मथ रही थी, उतने ही अलग अलग जवाब उसके जहन में आ रहे थे। नहीं, मुझे निमिष से प्यार नहीं है, मुझे बस ये एहसास अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी परवाह करता है। निमिष मुझसे बात करता है और मुझे अपने जीवन की प्राथमिकता मानता है। मुझे सिर्फ इस एहसास से प्यार है। उसे लगा कि जब से निमिष ने अपने और अपनी पत्नी पूजा के बीच के संबंधों के विषय में बताया, तब से उसे निमिष की ज्यादा फिक्र होने लगी थी। निमिष और पूजा के संबंध किसी बुजुर्ग जोड़े से भी ज्यादा नीरस थे। उनके बीच न तो संवाद था न ही दैहिक संबंध। कम से कम निमिष का तो यही कहना था। उसके जीवन के बारे में सुनने के बाद स्वाति को उससे सहानुभूति होने लगी थी। उस जैसा सुलझा हुआ और प्यारा इंसान अपने जीवन में हर खुशी का हकदार था, प्यार का भी। स्वाति अपनी सोच की परतों से खुद ही घबरा रही थी। कोई भी तर्क, कोई भी वजह इस बात को सही नहीं ठहरा सकती कि मैं एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रही हूं और ऐसे में अपने 15 साल पुराने एक सहपाठी के लिए मेरा दिल पिघल रहा है। स्वाति ग्लानि से भर गई और उसने निमिष से हर संवाद खत्म करने का फैसला लिया। उसे निमिष के साथ बिताया हुआ हर पल अभिनव के साथ की हुई बेवफाई लग रहा था। वो अभिनव से कुछ छुपाती नहीं थी, लेकिन निमिष के बदले हुए व्यवहार को उसने अभिनव के सामने जाहिर नहीं किया था। वो जानती थी कि अभिनव पजेसिव या कंट्रोलिंग पति नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे पूरी बात बता न सकी। ये भी उसके अपने मन का चोर था शायद। वो निमिष को दिए हुए समय की भरपाई अभिनव के साथ अच्छा वक्त गुजार के करना चाहती थी। स्वाति ने दीपावली की पुरानी लाइट्स को स्टोर से निकाल के अपनी हरी भरी बालकनी में लगाया। सुनहरी लाइट्स में पौधों की खूबसूरती और निखर गई। बेत के सोफे पर नए चढ़ाए कुशन कवर सज रहे थे। अभिनव घर में घुसा तो स्वाति ने तैयार होकर उसका स्वागत किया। अभिनव के लिए ये सुखद आश्चर्य था। बालकनी में गर्मा गर्म कॉफी के मग उसका इंतजार कर रहे थे। क्या बात है, अभी से दिवाली की सजावट शुरू हो गई। हट, शादी के कई साल बीत जाएं तो यही होता है। स्पेशल फील कराने की कोशिश का अंजाम तो देखो जरा। उसने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया। सॉरी बाबा, मजाक कर रहा था। जीवन में रस बना रहे उसके लिए प्यार में ये सब छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। देर रात तक दोनों वहीं बैठकर बातें करते रहे। घर और नौकरी की भागदौड़ में दोनों को आपस में बातें करने का मौका कम मिलता था। हालांकि स्वाति अपने हिस्से की बात रोज अभिनव से बोल ही देती थी, लेकिन वो एक तरफा संवाद था। अभिनव ने डिसाइड किया कि अब से हर शाम वो दोनों साथ में कॉफी पिएंगे और हर हफ्ते में कम से कम एक बार साथ में अपने दफ्तर से अलग कहीं जाएंगे। स्वाति को अब हल्का महसूस हो रहा था। हवा में घुले संगीत के साथ उसके जहन में एक चेहरा बार बार उभर रहा था, लेकिन उसने खुद को कड़ाई से रोक लिया और अभिनव को निहारने लगी। कितनी समानता है अभिनव और निमिष में। दोनों कम बोलते हैं, दोनों को मेरी परवाह है। काश हम दोस्त बनके रहते, काश उसे मुझसे प्यार न होता। मुझे उसकी कमी कितनी खल रही है, लेकिन निमिष ने मुझसे संवाद की अपनी कोशिश कुछ दिनों में ही बंद कर दी। प्यार तो नहीं ही रहा होगा उसे, शायद बस पसंद हो या बस आदत हो गई हो बात करने की। शायद कल किसी और की आदत हो जाएगी उसे। स्वाति सोच ही रही थी कि अभिनव ने पूछा, अरे सुनो, वो तुम्हारे ड्राइव टाइम कॉल का क्या हाल है?
अभिनव ने उससे निमिष का हाल पूछा था।

इन सब से दूर निमिष ने अपने दिल के शोर को न्यूज रूम के शोर में दबा दिया। अब वो पहले से ज्यादा खामोश, पहले से ज्यादा अकेला था। प्यार का इजहार न करके वो इतना अकेला तब भी नहीं था जब 15 साल पहले स्वाति चली गई थी। उसको ढूंढना, अपने दिल में बुने सपनों में खोए रहना उसका पसंदीदा काम था। फेसबुक पर स्वाति का मिल जाना उसके लिए किसी त्योहार जैसा बड़ा दिन था। वो उसे वर्चुअल दुनिया में देखकर खुश रहता। इन दिनों उसकी हर पोस्ट दसियों बार पढ़ता और उसकी तस्वीरों को अपने फोन के फोल्डर में छुपा के रखना उसके प्रिय शगल थे। निमिष के हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे। उसके चैनल की टीआरपी ने उसे फिर से नंबर वन बना दिया था। न्यूज रूम में जश्न जैसा माहौल था। पूरे साल हर हफ्ते नंबर वन रहना आसान नहीं था, लेकिन निमिष ने यह जीत हासिल की थी। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि निमिष का अधीनस्थ प्रोड्यूसर राकेश उसके पास आया। सर, इस साल आपको यूरोप की कपल ट्रिप के वाउचर मिलने वाले हैं, उसने निमिष को बताया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? निमिष ने ऐसे जताया जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। सर, अंदर की खबर है। आप अपने साथ किसे ले जाएंगे? राकेश ने हिम्मत करके पूछा। क्यों? निमिष ने आंखें उचका के पूछा। सर, मुझे ले चलिएगा ना, इस बार आप किसी को वाउचर दीजिएगा मत, राकेश ने फिर से खुशामद की। तुम क्या मेरे जीवन साथी बनने की फिराक में हो? निमिष ने हंसते हुए उसकी मौज ली। नहीं सर, आप कपल वाले ट्रिप, कॉन्सर्ट टिकट, मूवी और डिनर वाउचर सबको बांट देते हैं, इस बार चलिए ना, साथ चलते हैं, राकेश ने अपनी अर्जी का कारण स्पष्ट किया। जाओ अपना काम करो, निमिष ने उसे ठेल के वापस उसके डेस्क पर भेज दिया। राकेश को उसके 2-3 साथियों ने घेर लिया। अबे तुम क्यों जाओगे? हम जाएंगे, एक ने कहा। अरे भाई, मेरी ना शादी हुई है, मेरा हनीमून हो जाएगा, मुझे और मेरी बीवी को जाने दो, दूसरे ने विनती की। अरे यार, तुम्हारे हनीमून का खर्चा चैनल थोड़ी ना देगा, राकेश ने उसको डपटा। राकेश भाई, तुम उनसे कह दो ना कि तुम्हें गोद ले ले, पहले ने सुझाव दिया। ये सही है, निमिष सर को पापा बना लो, उनके जीवन में नौकरी के सिवा कुछ है भी नहीं, एक रेडीमेड बेटा ही मिल जाएगा। सर सिंगल हैं? नई एंकर नैना ने अचरज से पूछा। तुमको नहीं पता? सब कहते हैं सर अपने जमाने के दिल जले आशिक है, शायद प्रेमिका मिली नहीं या मर गई हो, क्या पता, दूसरे ने बताया। कितना गॉसिप करते हो यार, जाओ अपना काम करो सब, राकेश ने अपने डेस्क से भीड़ को भगाया और ग्लास केबिन में काम करते शांत निमिष की ओर देखा और सोचने लगा। कोई कह सकता है कि इतने अकेले हैं? शायद तभी पूरा पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, छुट्टी नहीं लेते, घूमने नहीं जाते। बीच में कुछ महीने चेहरे की रंगत बदली थी, खुश रहते थे, अब फिर से पहले जैसे बुत बन गए हैं। कांच की दीवार के उस पार निमिष सोच रहा था कि स्वाति से बात शुरू हुई तो वो खुद नहीं जानता था कि पुरानी भावनाएं उस पर यूं हावी हो जाएंगी। किसी को प्यार से दूर करना कितना आसान था, न जवाब का इंतजार, न रूठने का खौफ। ग्रेजुएशन के 3 साल मिलाकर करीब 18 सालों से उसने स्वाति को चाहा था। इतने सालों में उसने इस तड़प को कभी महसूस नहीं किया था। पिछले 1 महीने से स्वाति से उसकी बात बंद है। स्वाति के पीछे भागते 2 हफ्तों में उसने तिरस्कार को समझा था। वो समझता था कि स्वाति अभिनव से ही प्रेम करती है और उसे अपने बारे में आश्वस्त रखने के लिए ही तो निमिष ने पूजा के नाम का झूठ गढ़ा था। वो स्वाति की जिंदगी में अपनी छोटी सी जगह से खुश था। शायद उसे अपनी आकांक्षाओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, काश दोस्ती ही बनी रहती, लेकिन पीछे लौटना संभव नहीं था। इसलिए उसने स्वाति से कोई संपर्क न रखने का निश्चय किया और उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया ताकि भूले से भी वो उसकी जिंदगी में झांकने ना जाए।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह, वाचन स्वर जयंत पात्रिकर का, संपादन सहयोग स्नेहल भिसे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
4: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
3: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
5: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे, 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहां से हुजूर।
7: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाए गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

छायागीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। सुन ले ए महबूब, मेरी दुनिया को तेरे साथ की जरूरत है, मेरी आंखों को तेरी एक नजर का इंतजार, और मेरे दिल को विश्वास है तेरे सहारे का। जब तन्हाइयां मेरा दामन थाम लेंगी तो तेरी यादें मेरे साथ चलती रहेंगी। जब जिंदगी की राहें मुश्किल हो जाएंगी तो तेरी मोहब्बत मेरा हौसला बन जाएगी। मुझे दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, बस तेरे दिल में एक छोटी सी जगह मिल जाए, यही मेरा ख्वाब है।

इस दिल का क्या करूं जो हर पल तुम्हारा ही नाम लेता है। बहुत दिनों से अपने जज्बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब खामोशी मेरा साथ नहीं देती। पहली बार प्रेम पत्र लिखा है मैंने। अगर मेरी बातें तुम्हें नागवार गुजरे तो इसे नादान दिल की भूल समझकर माफ कर देना। बस इतनी सी इल्तिजा है तुझसे कि तू बस नाराज ना होना।

जिस राह पर तुम बढ़ोगे उस राह की हर आहट में मुझे ही पाओगे। हमारी जिंदगियां अब दो नहीं रही, एक ही धड़कन की दो सदाएं बन चुकी है। तुम्हारे दिल की हर अनकही बात मेरी नजरें कब की पढ़ चुकी हैं। अब लफ्जों की जरूरत नहीं, खामोशियां ही जुबा बन गई है। अब लफ्जों की जरूरत नहीं, खामोशियां ही जुबा बन गई है। तेरी मोहब्बत ही अब मेरी दास्तां बन गई है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का क्यों? ये खामोश रात भी मुझसे कुछ कह रही है। हवा की हर सरगोशी में जैसे तुम्हारा ही नाम सुनाई देता है। दिल की धड़कनें भी कोई अनजान सा नगमा गुनगुना रही है, जिसे सिर्फ मेरा दिल ही समझ पा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत ने बिना दस्तक दिए मेरे दिल में अपना आशियाना बना लिया हो। अब हर खामोशी में एक मीठी सी आहट है, हर तन्हाई में तुम्हारा एहसास। शायद इसी अनकहे एहसास का नाम मोहब्बत है।

पाकर रखा था, लगता है अब आंखें उसे ही बयां कर देंगी। डर ये है कि कहीं मेरी मुस्कान सबको मेरी मोहब्बत का पता ना बता दे। अजीब सी बात है, इस एहसास में मिठास भी है और एक मीठी सी चुभन भी। लगता है इस दिल ने प्यार का ऐसा जाम पिया है जिसमें शहद भी घुला है और जहर भी। अब खुदा ही जाने ये राज मेरे दिल में रहेगा या मेरी धड़कनों की जुबां बनकर सबके सामने आ जाएगा। मेरे दिल में रहेगा या मेरी धड़कनों की जुबां बनकर सबके सामने आ जाएगा।

जब भी बदरा घेर आते हैं, दिल में एक गड़गड़ाहट सी होती है। बिजली की हर चमक मेरे दिल को और बेचैन कर जाती है। ऐसे मौसम में दिल कहता है, काश साजन की बाहों का सहारा मिल जाए।

बरसात की बूंदों का डर, न गरजते बादलों का। उसे एक पल में सारी दुनिया से मिट जाए, बस धड़कनों की सरगम हो, बारिश की रुंझुन हो और साजन का साथ। शायद मोहब्बत का सबसे हसीन मौसम वही होता है जब बरसात बाहर भी बरस रही हो और दिल के अंदर भी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सायंकालीन सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। मैं मोहम्मद फखरुल हसन बना रहूंगा इस सभा में आपके साथ रात्रि 11:00।

फिर 10 मिनट तक प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 5:35 पर आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 6:02 पर ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बाड़ी। चर्चा होगी समन्वित मछली पालन पर। साथ ही चर्चा में सुनिएगा अरहर में पोषक तत्वों का प्रबंधन एवं कीट नियंत्रण। इसी कार्यक्रम में संध्या चंद्रा की वार्ता आप सुनेंगे। विषय होगा मृदा में पोषक तत्वों का महत्व। शाम 6:30 पर कार्यक्रम होगा ग्रामीण सभा। चर्चा होगी समसामयिक कृषि कार्य पर। आज का विचार में बकरी पालन से फायदे। भेंट वार्ता आप सुनेंगे पलामू जिला में प्राकृतिक खेती की संभावनाएं। भेंट वार्ताकार हैं दिलीप कुमार पांडे, कृषि विशेषज्ञ भेंटकर्ता हैं संतोष कुमार। आज का मौसम और जानेंगे आज के बाजार का भाव इसी कार्यक्रम के अंतर्गत।

शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर आप सुनेंगे विधानसभा समीक्षा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:45 पर रोजगार से जुड़ी बातें होंगी कार्यक्रम उड़ान के तहत, संकलन एवं वाचन मीना प्रीति कुमारी का है। शाम 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। 8:30 पर कव्वाली का प्रोग्राम होगा महफिल। 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू खबरें आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर हम पुनः शामिल होंगे विविध भारती की प्रसारण सेवा में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण या फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा को हम पेश करेंगे। रात 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी ये सभा समाप्त होगी हमेशा की तरह रात 11:10 पर। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

आकाशवाणी के ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली तमाम बहनों को रागिनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम घर आंगन में। बहनों, आज हम बातें करेंगे झारखंड के आदिवासी जनजाति की। झारखंड में कुल 32 अनुसूचित जनजातियां आदिवासी समुदाय निवास करती है, जिनमें से 8 या 9 को आदिम जनजातियां माना गया है। ये समुदाय अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और प्रकृति प्रेम के लिए जाने जाते हैं। प्रमुख जनजातियां में संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खरवार, खड़िया, भूमिज और लोहरा है। संथाल यह राज्य का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला आदिवासी समुदाय है। उरांव इन्हें कुरुक भी कहा जाता है। मुंडा जो जनजाति है वो अपनी मजबूत सामाजिक व्यवस्था और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। हो मुख्य रूप से कोल्हान क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है और ये वो समुदाय हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सबसे पीछे हैं, जिसमें असुर, बिरहोर, कोरवा, बिरजिया, मल, पहाड़िया, सौरिया, पहाड़िया, परहैया, सवर। प्रकृति पूजा में आदिवासी समाज प्रकृति का संरक्षक माना जाता है। ये पेड़, पहाड़ और नदियों की पूजा करते हैं। प्रमुख पर्व में सरहुल जो फूलों का त्यौहार, कर्मा, सोहराई और बाहा इनके मुख्य उत्सव हैं और सरना धर्म जो अधिकांश आदिवासी प्रकृति आधारित सरना आस्था का पालन करते हैं। तो ये हुई बातें झारखंड के आदिवासी जनजाति की और अब आइए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बहनों, इस गीत के बाद आइए आपको सुनवाते हैं एक वार्ता। विषय है माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार। वार्ताकार है वंदना कुमारी।
1: बच्चे का रिश्ता शरीर के साथ साथ भावनाओं का भी होता है। गर्भ में शिशु माँ के शरीर का एक हिस्सा होता है। 9 महीने गर्भ में शिशु का पोषण करने वाली माँ का उससे एक आत्मीय लगाव हो जाता है। माँ के दूध में 87% पानी, 1% प्रोटीन, 4% लिपिड और 7% कार्बोहाइड्रेट होता है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत पेय होता है, जो उसे जीवनदान देता है। माँ के पौष्टिक दूध से शिशु के शरीर का विकास होता है। इसी गुणकारी दूध को पीकर नवजात शिशु हिष्ट पुष्ट और बुद्धिमान बनता है। इस अमृतकारी दूध में खनिज, एंटीबॉडीज व जरूरी पोषक तत्व आदि होते हैं, जिससे शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सामान्यतः 6 महीने तक बच्चा कोई ठोस आहार नहीं ले सकता है, अतः वह अपने भोजन के लिए माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। शिशु के जन्म के 3-4 घंटे बाद से ही माँ का दूध पिलाना चाहिए तथा शिशु के कम से कम 6 माह के होने तक उसे माँ का दूध पिलाना जारी रखना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में किए गए सर्वे के अनुसार स्तनपान से डायरिया का खतरा 1/3 तक घट जाता है। आंकड़ों के मुताबिक विकासशील देशों में प्रति वर्ष लगभग

इसके अलावा माँ का दूध शिशु को कुपोषण अस्थमा से भी बचाता है। माँ के दूध में पाया जाने वाला फैटी एसिड प्रतिभा बढ़ाने वाला होता है। सर्वे के मुताबिक 6 साल तक के बच्चों ने माँ का दूध पिया होता है, उनका IQ कई गुना अधिक होता है। माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नामक तत्व होता है, जो बच्चे की आंत में लौह तत्व को बांध लेता है और लौह तत्व के अभाव में शिशु की आंत में रोगाणु पनप नहीं पाते। माँ के दूध से बच्चे का कान, सांस, पेट, एलर्जी, डायबिटीज, ल्यूकेमिया आदि बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। बच्चों का दिमाग तेज और मजबूत होता है। माँ का दूध संतुलित वजन बनाता है। माँ का दूध 6 प्रकार का होता है। शुरुआत में पहला दूध सबसे अधिक गाढ़ा और पीला होता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। इसके बाद 5 अन्य स्टेज आते हैं। कोलोस्ट्रम किसी भी बच्चे के जीवन के लिए सबसे जरूरी दूध माना जाता है। ये हर परिवार और स्वास्थ्य कर्मियों की जिम्मेदारी है कि बच्चे को जन्म के 4 घंटे के भीतर कोलोस्ट्रम यानी जन्म के बाद का पहला दूध मिले। इसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन इसमें पोषक तत्व होते हैं। दिखने में कोलोस्ट्रम पीला और गाढ़ा होता है। डिलीवरी के बाद 4 से 5 दिनों तक बच्चे को कोलोस्ट्रम मिलता है। कोलोस्ट्रम के बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज और WBC सेल्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। कोलोस्ट्रम में इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी प्रोटीन होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने के साथ कोलोस्ट्रम में मौजूद प्रोटीन कम होने लगता है, पर ये हर स्टेज पर दूध में मौजूद होता है। माँ को दूध पिलाने से फ़ायदा भी बहुत होता है। आजकल अक्सर माताएं बच्चों को अपना दूध पिलाने से कतराती हैं, क्योंकि अपने बच्चे से ज़्यादा चिंता अपने फिगर की होती है। ऐसी माताओं को यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक शोध के मुताबिक नवजात शिशु को दूध पिलाने से धीरे धीरे माता की अतिरिक्त चर्बी भी घटती है, जो गर्भावस्था के दौरान शरीर पर चढ़ती है। ब्रेस्ट फीडिंग से माँ और बच्चे का एक अटूट रिश्ता कायम होता है, जो उनके संबंधों को बेहतर और मधुर बनाता है। धन्यवाद।

अभी हमारी बहनें सुन रही थी वार्ता, माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार। वार्ताकार थी वंदना कुमारी। आइए सुनते हैं एक

0: बहनों आइए एक वार्ता सुनते हैं। नारी शिक्षा अत्यंत आवश्यक, वार्ताकार है दीप्ति पांडे।
1: शिक्षा हर किसी के जीवन का अभिन्न अंग है। बिना शिक्षा के किसी के भी जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। शिक्षण जीवन के हर पहलू को असर करता है। इस तरह शिक्षा पर स्त्री पुरुष दोनों का समान हक है, मगर भारत जैसे विकसित देश में स्त्रियों को शिक्षित बनाने के लिए कोई महत्व नहीं दिया गया है। पुराने समय में नारी का कर्तव्य घर के काम करना, बच्चे संभालना, घर संभालना आदि था। नारी की पढ़ाई को लेकर ज़्यादा व्यवस्था और उनका महत्व नहीं था, मगर बदलते समय के साथ इसमें भी परिवर्तन आया है। नारी की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक शिक्षित महिला ही अपने संतान को उन्नत बना सकती है, जीवन के सभी तौर तरीकों को जानकर बच्चों को शिक्षित कर सकती है। अगर महिलाएं शिक्षित हों तो वो अपने घरों की सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। शिक्षित नारी बहुत ही आत्मविश्वासी होती

0: होती है और शिक्षित होने के कारण धन कमाकर अपने और अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद भी कर सकती है। जिस तरह एक एक कोशिका मिलकर जीवन का निर्माण करती हैं, वैसे ही प्रत्येक परिवार की छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर समाज का निर्माण करती हैं। सभी इकाइयों की ऊर्जा का स्रोत और संपूर्ण परिवार की केंद्र बिंदु नारी होती है। यदि नारी शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं, और जब परिवार शिक्षित होता है तो एक पूरा राष्ट्र शिक्षित होता है। यही कारण था कि महान विचारक रूसो कहते थे, आप मुझे 100 आदर्श माताएं दें तो मैं आपको एक आदर्श राष्ट्र दूंगा। अजर अमर भारतीय संस्कृति से हमें नारी को अत्यंत सम्मान देने की प्रेरणा मिलती है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। माता के रूप में नारी धरती पर अपने सबसे पवित्रतम रूप में है। माता यानी जननी, माँ को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है। स्वयं ईश्वर की जन्मदात्री भी नारी ही रही है। इसलिए नारी का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की पहली शिक्षिका माँ ही होती है। बच्चे सबसे अधिक अपने माँ के संपर्क में ही रहते हैं। माताओं के संस्कारों, व्यवहारों और शिक्षण का प्रभाव बच्चे के मन मस्तिष्क पर सबसे अधिक पड़ता है। शिक्षित माता ही बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क में उन समस्त संस्कारों के बीज बो सकती है जो समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षित और विकसित मन मस्तिष्क वाली नारी अपने परिस्थिति और परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता आदि का ध्यान रखकर घर की उचित व्यवस्था और संचालन कर सकती है। जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सशक्त भागीदारी के लिए महिला शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। यदि नारी अशिक्षित हो तो वह अपने जीवन को समाज की गति के अनुरूप बनाने में असमर्थ रहेगी। यदि वह शिक्षित हो जाए तो न केवल उसका पारिवारिक जीवन सुंदर होगा, बल्कि नए समाज और राष्ट्र का निर्माण भी हो सकेगा। भारतीय समाज में शिक्षित माता गुरु से भी बढ़कर मानी जाती है। फिर भी हम यह कह सकते हैं कि हमारे समाज में नारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि नारी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक सभी स्तरों पर उपेक्षित जीवन व्यतीत करती है। जब बात शैक्षणिक शोषण की होती है तो एक ही सवाल मन में उठता है, यदि नारी को शोषण और अत्याचारों के दायरे से मुक्त करना है तो सबसे पहले उसे शिक्षित करना होगा, क्योंकि शिक्षा का अर्थ जीवन के प्रत्येक पहलू की जानकारी होना है।
1: अभी आप दीप्ति पांडे की वार्ता सुन रही थी, नारी शिक्षा अत्यंत आवश्यक। इसी वार्ता के साथ अब हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए इसी के साथ कार्यक्रम घर आंगन से अब दीजिए रागिनी कुमारी और
2: प्रतिमा वर्मा को
1: अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 6 बजे है प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन छात्रों के आंदोलन और जेपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा सदन में छाया रहा। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है और छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने परीक्षाएं रद्द कर पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलनरत छात्रों ने सरकार के साथ वार्ता के लिए 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अंतिम सूची जारी कर दी है। प्रतिनिधिमंडल में रविन्द्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, अंकित राज, कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी, रविन्द्र कुमार

0: रवि, आनंद कुमार और अंकित कुमार शामिल हैं। अब सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच प्रस्तावित वार्ता पर सभी की निगाहें टिकी हैं। गुमला के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दिलेश्वर महतो ने जिले के नागरिकों से मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम जांचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 4 सितम्बर तक चलेगी। पाकुड़ में आज भारतीय रिजर्व बैंक और जिला अग्रणी बैंक की ओर से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बैंक अधिकारियों, उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों और उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में रोजगार सृजन, बैंक ऋण से वित्तीय सहायता और जिले में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। गिरिडीह जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए डायल 112 परियोजना के तहत मिले 32 नए आपातकालीन वाहनों को आज विभिन्न थानों के लिए रवाना किया गया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

0: खेतीबाड़ी का आइटम सुनने वाले सभी ग्रामीण भाइयों को रागिनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार।
0: स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। ग्रामीण भाइयों, आज हम बातें करेंगे समन्वित मछली पालन की।
1: ग्रामीण भाइयों, समन्वित मछली पालन एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, सुअर पालन या खेती जैसे धान या सब्जी उत्पादन को एक साथ किया जाता है। इसमें एक योजना के अपशिष्ट दूसरी योजना के लिए प्राकृतिक खाद या आहार का काम करते हैं, जिससे लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। समन्वित मछली पालन के कई प्रकार हैं ग्रामीण भाइयों, जैसे मछली सह मुर्गी पालन। मुर्गी के मलमूत्र या विष्ठा युक्त भूसे को तालाब में खाद के रूप में डालते हैं। इससे अलग से खाद या मछली के आहार की जरूरत नहीं पड़ती है। मछली सह बत्तख पालन। बत्तखें तालाब के हानिकारक कीड़े मकोड़ों को खाती है, उनका मल मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन बनता है। बत्तखों के तैरने से पानी में ऑक्सीजन भी घुलती है।
0: और धान के साथ खेत में मछली पालन। धान के साथ खेत में ही कम गहराई वाले पानी में मछलियां पाली जाती हैं। मछलियों का मल धान की फसल के लिए बेहतरीन खाद का काम करता है। मछली सह पशुपालन यानी सुअर या गाय। पशुओं के गोबर और मूत्र का उपयोग सीधे तालाब की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। समन्वित मछली पालन के भी लाभ भी हैं। कम लागत, जैसे अलग से महंगे मछली आहार और रासायनिक खादों पर खर्च बच जाता है। एक ही जमीन और पानी के संसाधन से किसान को मछली के साथ साथ अंडे, मांस, दूध या फसल से अतिरिक्त कमाई होती है। कचरे या अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण होता है और पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो ये हुई बातें समन्वित मछली पालन की। और कार्यक्रम में अब आइए, आपको सुनवाते हैं भरत सिंह भारती के गाए लोकगीत।

0: भरत सिंह भारती के गाए इस लोकगीत के बाद आइए सुनवाते हैं आपको संध्या चंद्रा की वार्ता, मृदा में पोषक तत्व का महत्व।
1: फसलों की अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटैश के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या 8 है, जस्ता, तांबा, लोहा, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम, निकल एवं क्लोरीन। इनमें जस्ता, लोहा एवं बोरान का प्रमुख स्थान है। साधारणतः इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अधिक उपज देने वाली फसलों के प्रभेदों का फसल चक्रों में समावेश, गहन खेती, रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग एवं जैविक खादों की उचित मात्रा मृदा में नहीं डालने के कारण हो रहा है। फसल उत्पादन में 4 बिंदुओं पर मुख्यतः नगद खर्च की आवश्यकता होती है। सिंचाई, उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण। सिंचाई के बाद अधिकतम खर्च उर्वरक पर किया जाता है। उर्वरा शक्ति का निर्धारण मृदा फसलोत्पादन में 4 बिंदुओं का मुख्यतः नगद खर्च की आवश्यकता

आवश्यकता होती है, सिंचाई, उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण। सिंचाई के बाद अधिकतम खर्च उर्वरक पर किया जाता है। उर्वरा शक्ति का निर्धारण मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्र, फसलों द्वारा मृदा में पोषक तत्वों का ह्रास एवं पौधों में पोषक तत्वों की अदृश्य शुद्धता, कमी एवं अधिक की जानकारी से प्राप्त होता है। अब देखते हैं पोषक तत्वों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुख्य पोषक तत्वों का पौधों पर प्रभाव एवं कमी के लक्षण। नाइट्रोजन, यह पौधों के तने, शाखाओं एवं पौधों पत्तों के स्वास्थ्य एवं वृद्धि में सहायक है। मृदा में इसकी अधिकता से पौधे बढ़कर गिर जाते हैं, रोगों एवं कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, दाने कम लग पाते हैं तथा विलंब से पकते हैं। इसकी कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। हल्के हरे रंग के नीचे के पत्ते पपीते पीले रंग से लेकर भूरे रंग के हो जाते हैं। डंठल एवं तना छोटे और पतले हो जाते हैं। फास्फोरस, यह पौधों की जड़ों की वृद्धि में सहायक है एवं दोनों को पुष्ट करता है। फास्फोरस आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन के हानिकारक प्रभावों को भी दूर करता है तथा कीटों एवं रोगों के प्रकोपों को रोकता है। फसलें समय पर पकती है। इसकी कमी से गहरे हरे रंग का पौधा बैंगनी रंग, जो बाद में स्याही युक्त तथा लाल रंग में बदल जाता है। पोटैश की मात्रा, यह पौधों में चीनी एवं स्टार्च बनाने की प्रक्रिया में सहायक होता है। इसके साथ ही उनमें प्रतिकूल मौसम एवं कीटों तथा व्याधियों से बचने की क्षमता में वृद्धि लाता है। इसके अलावा पौधों में तना एवं डंठलों को मजबूत बनाता है। इससे पौधों में जलधारण की क्षमता बढ़ जाती है। इसकी कमी के कारण नीचे के पत्तों पर निर्जीव रेशे के धब्बे, चितकबरे या पीले होते हैं या फिर इनमें हरेपन की कमी होती है। इन मुख्य पोषक तत्वों की आपूर्ति जैविक खादों एवं रासायनिक उर्वरकों द्वारा की जाती है। पक्के फसल के लिए अलग अलग मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जस्ता, यह पौधों के अंदर इंडोल एसेटिक एसिड नामक हार्मोन का निर्माण करने एवं उनकी वृद्धि में सहायक करता है और प्रोटीन की मात्रा को भी बढ़ाता है। इसकी कमी के लक्षण कुछ प्रमुख फसलों में इस प्रकार से है, जैसे धान रोपाई के 15 से 20 दिनों बाद सबसे पहले ऊपर से तीसरी पत्ती पर लाल भूरे रंग के बिंदु प्रकट होते हैं। ये तुरंत आपस में मिलकर बड़े भूरे रंग के धब्बे बना लेते हैं और अंत में पूरी पत्ती को ढक लेते हैं। इसे धान के खैरा रोग के नाम से भी जाना जाता है। और अब देखते हैं मक्का। जस्ते की कमी के लक्षण सबसे पहले नई पत्तियों पर प्रकट होते हैं। नवीन पत्ती मतलब नए पत्ते के आधार के तंतु मध्य शिरा के दोनों तरफ से सफ़ेद पीले रंग में बदल जाते हैं और धीरे धीरे पत्ती के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। इससे तने की दो घाटों के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाती है और पौधों का आकार छोटा दिखता है। गेहूं में जस्ते की कमी के लक्षण कल्ले निकलने समय दिखाई देते हैं। सबसे पहले ऊपर से तीसरी पत्ती के मध्य शिरा एवं किनारों के बीच के भागों में हल्के पीले रंग की धारी बन जाती है और आगे चलकर भूरे रंग में बदल जाती है। पत्ती बीज से सिकुड़ने लगती है और सूख जाती है। चना एवं मसूर में जस्ते के अभाव में पौधों के बीज के भाग की पत्तियों का हरा रंग लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और बाद में ये पत्तियां सूखने लगती है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, शाखाएं कम निकलती है और पत्तियां आकार में छोटी दिखती है। प्याज, जस्ते की कमी होने से पौधे का विकास रुक जाता है, ऊपरी पत्तियां टेढ़ी हो जाती है और आगे चलकर सिकुड़ना एवं सूखना प्रारंभ कर देती है। प्याज की गांठें आकार में काफ़ी छोटी हो जाती है। जस्ते के अनुप्रयोग की विधि कैसे करते हैं। मृदा उपचार विधि फसल की बुआई या रोपाई के समय 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा में मिला दिया जाता है। इसका असर चूना युक्त मृदा में 4 तथा अन्य मृदाओं में 6 फसलों तक रहता है। मृदा में 50 क्विंटल कंपोस्ट और 12.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर देने की सिफारिश की जाती है। इससे काफ़ी लाभ होता है। अब देखते हैं छिड़काव की विधि क्या है। किसान भाई, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का 2.5 किलोग्राम लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर 15 दिनों के अंतराल पर दो छिड़काव कर देने से जस्ते की कमी के लक्षण दूर हो जाते हैं। इसमें फसलों की उपज में 30 से 40% तक

वृद्धि हो जाती है। लौह तत्व में जैसे पौधों की पत्तियों में हरे रंग के उत्पादन में लौह तत्व का महत्वपूर्ण योगदान है। चूना युक्त मृदा में धान की पौध को लौह तत्व की कमी से काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। लौह तत्व की कमी होने पर सबसे पहले सबसे ऊपर की पत्ती का रंग पीला सफ़ेद होने लगता है और बाद में पूरी पत्ती सफ़ेद रंग में बदल जाती है तथा सूखने लगती है। तो आइए देखते हैं लौह तत्व की अनुप्रयोग विधि। मृदा अनुप्रयोग, जैसे मृदा में लौह तत्व की कमी को पेफरस सल्फेट 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या पाइराइड 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालकर पूरा किया जाता है। फेरस सल्फेट को बुआई के समय अन्य उर्वरकों के साथ मिलाकर मृदा में डाल देना चाहिए, लेकिन पाइराइड को बुआई से 25 दिन पहले मृदा में डाल देना चाहिए जिससे रासायनिक क्रिया पूरी हो सके। साथ ही किसान भाई पत्तियों पर फेरस सल्फेट घोल का छिड़काव किस तरह से करते हैं, आइए देखते हैं। लोहे की कमी 1-2% फेरस सल्फेट का पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव से पूरी हो जाती है। साथ ही बोरान में यह पौधों का एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है और पौधों के भीतर शर्करा के स्थानांतरण को बढ़ाता है। बोरान परागण तथा प्रजनन क्रिया एवं कोशिका विभाजन में मदद करता है। यह पौधों में पुष्प फल तथा बीज बनने की क्रिया को संपादित करता है। बोरान की कमी को बोरेक्स या सुहागा द्वारा पूरा करते हैं। चूना युक्त तथा भारी मृदाओं में बुआई के समय 15-16 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा में मिलाकर बीजों की बुआई करनी चाहिए। चूना रहित हल्की बलुई मृदा में 10-15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोरेक्स का अनुप्रयोग करना चाहिए। इससे फसलों की उपज में वृद्धि होती है। अधिकांश फसलों को 15-16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोरेक्स की आवश्यकता होती है। किसान भाई पौधों के सामान्य विकास एवं वृद्धि के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से किसी एक पोषक तत्व की

फसल नहीं मिलती। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को पौधे हवा एवं जल से प्राप्त करते हैं, साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इनकी पौधों को काफ़ी मात्रा में ज़रूरत रहती है, इन्हें प्रमुख पोषक तत्व कहते हैं। आइए देखते हैं तिल में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन से हैं। तेल के लिए उगाई जाने वाली यह दुनिया की सबसे पुरानी फसल है। जिन कठिन परिस्थितियों में दूसरी फसल नहीं होती वहाँ भी तिल को उगाया जा सकता है। दुनिया का सबसे अधिक तिल एक्सपोर्ट करने वाला देश हमारा देश है। जापान इसका सबसे अधिक आयात करने वाला देश है। तिल का तेल तथा साबुत तिल खाना बनाने में बहुत काम लिया जाता है। इससे अच्छे स्वास्थ्य का एक कारण हो सकता है। तिल में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें कॉपर प्रचुर मात्रा में होता है। मैग्नीज का भी यह अच्छा स्रोत है। साथ ही किसान भाई, मिट्टी में 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता के अनुसार इसे कुछ प्रकार में विभाजित किया जाता है। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटैश। गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरान एवं क्लोरीन। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इनकी पौधे को काफ़ी मात्रा में ज़रूरत रहती है। इन्हें प्रमुख पोषक तत्व कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि करेले सब्जी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। करेला अपनी कड़वाहट के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके गुण इसकी कड़वाहट में ही छिपे होते हैं। गुणकारी होने के कारण ही करेला सब्जियों में एक विशेष स्थान रखता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर होते हैं। यह खनिज से भरपूर होता है। इसमें पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज पाए जाते हैं। विटामिन सी, विटामिन ए इसमें प्रचुरता में होते हैं। विटामिन बी समूह के कॉलेट, थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड आदि भी इसमें इसके उपयोग से मिलते हैं। अब आइए देखते हैं मिट्टी में डाले जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व तो कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रेट। नाइट्रोजन का वह रूप जो पौधों का उपयोग करता है। पौधे की पत्ती के विकास को प्रभावित करके पत्ते को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह क्लोरोफिल उत्पादन की मदद से पौधों को उनका

62 के आसपास होता है। तो इस तरह से वह काफ़ी फायदेमंद और इस तरह मृदा में पोषक तत्व भरपूर पाए जाते हैं और इसकी उपयोगिता भी काफ़ी होती है।

किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे संध्या चंद्रा की वार्ता। विषय था मृदा में पोषक तत्वों का महत्व। और अब आइए बात करते हैं अरहर में पोषक तत्वों का प्रबंधन और कीट नियंत्रण।

0: ग्रैंड भाइयों, अरहर में पोषक तत्वों का प्रबंधन और कीट नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पोषक तत्वों की बात करें तो खेत की मिट्टी की जांच के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें। अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर डालें। बुआई के समय संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग करें। जिंक या सल्फर की कमी होने पर अनुशंसित मात्रा में इनका उपयोग करें। बीज उपचार के लिए राइजोबियम एवं PSP कल्चर का प्रयोग करें, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण और फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है। कीट नियंत्रण भी जरूरी है, खेत की नियमित निगरानी रहते हैं, इसका उपयोग करें। ग्रामीण भाइयों, खेत को खरपतवार मुक्त रखें और फसल चक्र अपनाएं।
1: और प्रभावित फलियों और पौधों को नष्ट कर दें। आवश्यकता होने पर किसी वैज्ञानिक की सलाह के अनुसार अनुशंसित कीटनाशकों का छिड़काव करें। और इसके कीट भी हैं, फली छेदक, फली मक्खी और माहू। संतुलित पोषण, समय पर निगरानी और समन्वित कीट प्रबंधन अपनाकर अरहर की फसल का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ाई जा सकती है। अरहर की फसल में फली छेदक, फली मक्खी और रस चूसने वाले कीट मुख्य रूप से 30 से 40% तक नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फसल में फूल और फलियां आते समय फेरोमोन ट्रैप लगवाएं, नीम के तेल का छिड़काव करें और ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेनोफॉस या क्विनोलोफॉस की उचित मात्रा का उपयोग करें।
0: ग्रामीण भाइयों, मुख्य कीट और उसकी पहचान आप कैसे करेंगे? फली छेदक अगर हो, यानी पॉड बोरर, इसका लार्वा हरा या भूरा होता है। यह फलियों में छेद करके दाने खाता है। फली मक्खी, यह छोटी काली मक्खी है, इसके शिशु फलियों के अंदर दाने नष्ट करते हैं। रस चूसने वाले कीट अगर आपको दिखाई दे, जैसे सफ़ेद मक्खी या फली बग, कोमल अंगों और फूलों से रस चूसते हैं। जैविक और यांत्रिक प्रबंधन भी जरूरी है, जैसे गंधपास, फेरोमोन ट्रैप, कीटों की निगरानी और नर कीटों को पकड़ने के लिए खेत में 5 से 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएं। पक्षी बसेरे भी आप लगा सकते हैं, खेत में जगह जगह टीन या डंडे लगाएं ताकि पक्षी बैठकर इल्लियों को खा सकें। नीम का तेल भी जरूरी है, प्रकोप की शुरुआती अवस्था में 5 मिलीलीटर नीम का तेल प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। रासायनिक नियंत्रण भी जरूरी है, फली छेदक के लिए आप प्रोफेनोफॉस 50% ईसी यानी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या क्विनोलोफॉस 25% ईसी का छिड़काव करें। रस चूसक कीट के लिए इमिडाक्लोरोप्रिट का उपयोग निर्देशानुसार करें। अरहर की बेहतर उपज के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन आवश्यक है, इसके लिए प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 25 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही राइजोबियम कल्चर का उपयोग और गोबर की खाद देना भी जरूरी है।

0: किसान भाइयों, खेत की मिट्टी की जांच कर जैसा कि हमने बताया उसी के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। बुआई से पहले अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट डालें। खेत का नियमित निरीक्षण करें और कीटों की प्रारंभिक अवस्था में ही नियंत्रित कर लें। रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग केवल कृषि विशेषज्ञ की सलाह और अनुसूचित मात्रा में ही करें। फली छिदक, फली मक्खी और माहू जैसे प्रमुख कीटों का समय पर नियंत्रण करें। संतुलित पोषण, समय पर सिंचाई, नियमित निगरानी और समन्वित कीट प्रबंधन अपनाकर अरहर की उपज और गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। इससे उत्पादन लागत कम होती है और पर्यावरण की सुरक्षा होती है और किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। तो अरहर भारत की जो प्रमुख दलहनी फसल है, इसका उर्वरता आप जरूर बढ़ाएं और संतुलित पोषण और समृद्ध कीट प्रबंधन भी जरूरी जरूर करें ताकि अरहर की जो फसल है वो भलीभांति हो पाए, फसल की सबसे वृद्धि हो, उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि हो, उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग हो और लागत कम होनी चाहिए और पर्यावरण की सुरक्षा भी होनी चाहिए और किसानों की आय में वृद्धि भी होती है इसमें।
1: तो ग्रामीण भाइयों, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे अरहर में पोषक तत्वों का प्रबंधन और कीट नियंत्रण की। तो इसी चर्चा के बाद अब हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है। तो इसी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए रागिनी कुमारी और
0: प्रतिमा वर्मा को
1: अनुमति।
0: नमस्कार।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर। अभी हमारे ग्रामीण और कृषक भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेतीबाड़ी। थोड़ी देर में हम ग्रामीण सभा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: ग्रामीण सभा सुनने वाले तमाम श्रोताओं को प्रतिमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही रागनी कुमारी का भी नमस्कार।
0: कार्यक्रम में सबसे पहले बातें करते हैं समसामयिक कृषि कार्य की। तो पिछले 3 दिनों में कृषि मौसम विज्ञान वेधशाला में 141 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान हम आपको जरूर बताएंगे। उसके पहले आप ये जानें कि 8 से 12 अगस्त के बीच भारी बारिश, बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान और जोरदार सतही हवाएं चलने की संभावना है। कृषक भाई, तेज हवाओं के कारण मक्का और अरहर जैसी खड़ी फसलों के गिरने और सब्जी वाली फसलों के फल झड़ने की आशंका है। आने वाले दिनों में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना को देखते हुए किसान भाई डोभा के निर्माण के माध्यम से यथास्थान संरक्षण और जल संचयन के माध्यम से वर्षा जल का प्रबंधन कर लें, जो सूखे दिनों में फसलों की जल आपूर्ति को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। जिस किसान के पास ऊपरी खेत अभी भी पड़ती रह गया है, वे कुलथी, उड़द, मूंग या विभिन्न सब्जियों की खेती के लिए तैयारी करें। किसानों को आगामी 5 दिनों में सिंचाई, अंतर कृषि संचालन और खड़ी फसलों में पौध संरक्षण उपायों और उर्वरकों के प्रयोग को स्थगित कर देना चाहिए। काटी गई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। बारिश से बचाने के लिए सब्जियों के पौधों को पॉलिथीन से ढक दें। बारिश और बादल की स्थिति से खड़ी फसलों में रोग का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए किसानों को इसकी निरंतर निगरानी रखनी चाहिए। मड़ुआ की फसल जो 20 से 25 दिन पुरानी है, उनमें निकाई गुड़ाई करें। इसके पश्चात 22 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया का भुड़काव करें।
1: ग्रामीण भाइयों, अब बात करते हैं मक्का की। तो घुटना अवस्था में फसल की सक्रिय वृद्धि होती है, इसलिए खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें और जल भराव से बचाएं। नेत्रजन की शेष मात्रा 26 किलोग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में करें। खेत को खरपतवार मुक्त रखें और तना छेदक फॉल आर्मी वॉर्म के प्रकोप की नियमित निगरानी करें। पत्तियों के बीच में कीट की सूंडी और उसके मल क्षति के लक्षण दिखाई देने पर उचित नियंत्रण उपाय अपनाएं। रुक रुक कर शुष्क और गीले मौसम की स्थिति, नर्सरी में जीवाणु पत्ती झुलसा रोग और परनछद अंगमारी जैसे बीमारियों के लिए अनुकूल है। रोग फैलने से रोकने के लिए हेक्साकोनाजोल प्लांटोमाइसिन 1.0 ग्राम प्रति लीटर के साथ पत्तियों पर छिड़काव करें। यदि नर्सरी में ब्लास्ट की समस्या दिखाई दे तो टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सी एस्ट्रोविन 25% 0.4 ग्राम या आइसोप्रोथिलेन 40 EC 1.5 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 7 से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव को दोहराएं। तनाछेदक कीट के प्रकोप से बचाव के लिए खेत में डेड हार्ट और सफ़ेद बालियों को निकालकर नष्ट करें। प्रकोप अधिक होने पर क्लोरांटिला प्रोल 18.5% 0.3 मिलीलीटर प्रति पानी की दर से छिड़काव करें। अनावश्यक नेत्रजन यानी यूरिया के प्रयोग से बचें और कीटनाशक का छिड़काव वर्षा रहित मौसम में करें। समय पर बोई गई फसल वानस्पतिक अवस्था में है और ढलान की तरफ नालियां बनाकर अतिरिक्त पानी निकालने का इंतजाम करें। जो किसान अभी भी बुआई का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ज्वार, चावल, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, मूंग और भिंडी के साथ अंतर फसल अपनाने का सुझाव है। अंतर फसल के मामले में अरहर प्लस ज्वार पंक्ति अनुपात 1:1, अरहर प्लस मक्का पंक्ति अनुपात 1:1, अरहर और मूंगफली अनुपात 1:3, अरहर प्लस सोयाबीन 1:2, अरहर और उड़द मूंग 1:2 और अरहर प्लस भिंडी अनुपात 1:1 बनाए रखें और तदनुसार उर्वरक देते रहें।

परवल में फल और बेल चढ़न पत्ती झुलसन देखी जा सकती है। खेत से क्षतिग्रस्त फल और बेलों को हटा दें और उन्हें खेत में उसके आसपास ना रखें। धूप वाले दिन में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%, 3 ग्राम प्रति लीटर पानी और मेटालैक्सिल 8%, मैंकोजेब 64%, 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी का बारी बारी छिड़काव करें। करेले की फसल में फल मक्खी के प्रकोप देखे आ रहे हैं, जिससे करेले के फल पीले दिखने लगते हैं और फल जल्दी नरम हो जाते हैं। इसके बचाव के लिए किसान भाई अपने खेतों में 20 से 25 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाएं। ऊपरी जमीन पर किसान भाई कंद फसलें जैसे ओल और मसाले जैसे हल्दी की बुआई करें। बुआई नाली और मेड़ विधि से करें। जो किसान भाई ये फसलें लगा चुके हैं, वे आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए जल निकासी की उचित सुविधा करें। जल निकासी के पश्चात खरपतवार का नियंत्रण कर मिट्टी चढ़ा दें। और अब बात करते हैं पशुपालन की। तो वर्षा और उमस के मौसम में पशुओं के बाड़े की साफ सफाई और जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। पशुओं को सूखा और हवादार स्थान पर रखें और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं। मच्छर मक्खी और परजीवी नियंत्रण के लिए नियमित रूप से पशुओं और बाड़े की निगरानी करें। पशुओं को गला घोटू, लंगड़ा बुखार और अन्य प्रचलित संक्रामक रोगों के विरुद्ध समय पर टीकाकरण कराएं। बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें। किसान भाइयों, यह समय मिर्च, बैंगन और फूलगोभी की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। किसान पौधशाला में कीट अवरोधी नायलॉन की जाली का प्रयोग करें ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचा सकें। पौधशाला को तेज धूप से बचाने के लिए छायादार नेट द्वारा 6.5 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। बीजों को कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के उपचार के बाद पौधशाला में बुआई करें। बरसात के दिनों में किसी भी दवा का छिड़काव साफ मौसम देखकर ही करें और दवा के घोल में चंडोवित या टीपॉल 1 मिलीलीटर प्रति 2 लीटर पानी अवश्य मिलाएं। इनके अभाव में दवा के घोल को साबुन के पानी में तैयार करें। इसी दवा को का घोल चिपचिपा हो जाता है और हल्की वर्षा के बावजूद दवा पूर्णतया पौधे से धुलता नहीं है। तूफान और बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें। खुले मैदानों या जलाशयों के

0: पास ना रहें, बिजली या धातु की चीज़ों को ना छुएं, तार वाले बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल ना करें और ज़मीन पर सपाट ना लेटें। क्या कर सकते हैं आप? तो सुरक्षित जगह पर शरण लें, पेड़ों पानी पहाड़ियों धातु की चीज़ों बिजली की लाइनों से दूर रहें, घर के अंदर रहें और हो सके तो यात्रा ना करें। अगर किसान खेत में है तो उन्हें कोई शरण नहीं मिल रही है तो उस इलाके की सबसे ऊंची चीज़ से दूर रहें। आइए इस चर्चा के बाद आपको सुनवाते हैं भेंटवार्ता। विषय है पलामू जिला में प्राकृतिक खेती की संभावनाएं। भेंटवार्ताकार हैं कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे जी, बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: किसान भाइयों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे प्राकृतिक खेती की, और प्राकृतिक खेती की पलामू जिला में क्या संभावनाएं हैं इस पर विस्तृत जानकारी हमारे साथ आज साझा करेंगे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र प्रबंधक दिलीप कुमार पांडे जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार आपको और श्रोता बंधुओं को।
1: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि प्राकृतिक खेती है क्या।
2: प्राकृतिक खेती में वैसी खेती को जो पुरातन तरीका से हम लोग पहले करते आ रहे थे
1: जी,
2: जिसमें जमीन का जो विनाश की प्रकृति अभी हम लोग देख रहे हैं, तो विनाश की प्रकृति नहीं हो, कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो गाय का, मतलब इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि जो पहले से भी गाय खेती से रिलेटेड थी उसको मेंटेन करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए ज़मीन को, पर्यावरण को बचा करके रखना, और जो उत्पादन है इस उत्पादन में कमी भी नहीं लाना है। तो प्राकृतिक खेती का मुख्य मतलब यही है कि इसमें किसी भी तरीका से जमीन की उर्वरा शक्ति को प्रभावित नहीं होने देना है।
1: इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हो सकते हैं?
2: इसके मुख्य स्रोत के तौर पे हम लोग चार चीज़ को इंक्लूड करते हैं। जैसे इसको आप लोग वेबसाइट के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से देखते हैं, इसमें चार मुख्य स्रोत हैं। एक जीवामृत है, जीवामृत में जीवाणु आधारित घोल हम लोग तैयार करते हैं। तो जीवाणु आधारित जो घोल तैयार करते हैं उसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर, गाय का मूत्र, बेसन और गुड़ का प्रयोग करते हैं। दूसरा है जो मुख्य इसमें है बीजामृत। बीजामृत का प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं बीज उपचार के लिए। हम लोग इसमें भी गाय के गोबर का, गौमूत्र का, चूना का प्रयोग करते हैं और इससे सीड ट्रीटमेंट करते हैं। जो सीड ट्रीटमेंट हम लोग पहले वेबिस्टिन से किसान भाई करते थे या अन्य किसी फंजीसाइड से, तो इसमें मुख्य रूप से गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं हम लोग बीज उपचार के लिए। तीसरा में मुख्य रूप से गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं हम लोग बीज उपचार के लिए। तीसरा कंपोस्ट जो हम लोग बोलते हैं, केचुआ खाद की निरंतरता को बनाए रखना है
1: जी।
2: और तीसरा है जमीन में मॉइस्चर को बनाए रखना
1: जी।
2: जमीन में जो पानी धारण की क्षमता है उसको मेंटेन करना और किसी भी तरीका से कीटनाशक, जो रासायनिक कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है।
1: अच्छा अच्छा, प्रश्न उठता है कि हमारे किसान भाई लोग इसका किस तरह से सदुपयोग करें।
2: देखिए, सदुपयोग करने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले जो मानसिक रूप से तैयार होना होगा। जैसे पलामू के किसान जो है, यहाँ 80% से 90% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन बहुत कम है और उस जमीन में आज के समय में जो यंत्रीकरण हम लोग कहते हैं ट्रैक्टर वगैरह चलने की संभावना न के बराबर है
1: जी।
2: लेकिन फिर भी लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं और ट्रैक्टर चलाने से या जो उनमें खरपतवार नाशी का, जीवाणु नाशी का या जो फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर, उसका प्रयोग करने से जो उनकी खेती में लागत है वो, जो उनको मुनाफा आना चाहिए वो लागत का लगभग 50% हिस्सा इसमें उनका चला जाता है
1: जी।
2: तो जब हम उन लोग को देखते हैं कि निर्वाही खेती भी जैसा भी बन के नहीं रहता है, किसान भाई अक्सर कहते सुने गए हैं कि खेती में हमें घाटा लगता है, तो किसानों को जब हम लोग बेहतर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज देखते हैं ऑर्गेनिक उत्पाद का मार्केट बहुत बढ़िया है
1: जी,
2: ऑर्गेनिक उत्पाद का मार्केट बहुत बढ़िया है। दूसरा चीज़ क्या है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी इसमें बेहतर है।

0: जब कीटनाशक का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि आज समाज में देखेंगे 18-20 साल के लड़के कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं, तो उसको भी रोकना है। और पलामू में, चूंकि जो पलामू का एरिया है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ की जमीन है बहुत ही सूटेबल है, खासकर यहाँ के अभी तक हम लोग देखते हैं कि कीटनाशक का प्रयोग कम हुआ है, लोग की चूंकि क्षमता कम है, आर्थिक क्षमता कम है, उसके चलते वो फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करते हैं। तो पलामू में देखिए इसकी असीम संभावना है और आने वाले समय में हम लोगों को लौटना ही होगा। इसका मुख्य और मुख्य एकमात्र आधार है कि आपको इस खेती को बेहतर ढंग से करने के लिए, आगे आपको सर्वाइव करने के लिए अपने खेती में एक गाय को जरूर आपको जोड़ के रखना होगा। यदि आप गाय को जोड़ करके रखते हैं, जो कि खेती का एक मूल आधार है, तो हमेशा मैंने जो प्रॉफिट में किसान रहेगा उसका लागत समझिए कि जीरो के बराबर, उसका लागत शून्य रहेगा और जो भी उसका होगा वो उसका मुनाफा में जाएगा।
1: जी, अब प्रश्न उठता है कि हमारे किसान भाई लोग अगर करना चाहे मतलब प्राकृतिक खेती, तो इससे लाभ और हानि की बात आती है, मतलब उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें तो।
0: देखिए, जब किसी भी चीज में हम लोग बैक जैसे हुआ कि हमको पीछे लौटने की बात आती है, हमेशा बात आती है कि इसमें जब प्राकृतिक खेती की बात हम करते हैं तो ये तो पीछे लौटने वाली बात हुई। जब कृषि में क्रांति आ गई, तो कृषि में क्रांति आई 1960 के दशक में और हम लोग उसका दुष्परिणाम भी आज देख रहे हैं।
1: जी,
0: दुष्परिणाम के तौर पे हम लोग ये देख रहे हैं कि दिनों दिन हमारा जो यहाँ का स्थानीय स्तर की बीज थी वो बीज लुप्त होते जा रही है, जिसका कि शिद्दत से लोग महसूस कर रहे हैं कि वो बीज रहता तो आज थोड़ा सा भी अकाल की संभावना कभी हो जाती है तो उस अकाल की संभावना से वो पार पा जाते हैं।
1: जी,
0: जैसे पहले लोग बोलते थे कि 100 वर्ष में एक बार अकाल पड़ता था, लेकिन आज का ट्रेंड आप देखिएगा तो 10-12 वर्षों के अंतराल पे कम से कम 2 बार तो बहुत प्रभावित करने वाला अकाल होता है और आंशिक रूप से अकाल लोग हमेशा झेल रहे हैं। तो अकाल ये नहीं है कि पानी नहीं हो रही है, पानी हो रही है, लेकिन मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो चुकी है। दूसरा चीज है जो वैरायटी सीड का था, वो वैरायटी चूंकि बदल गया है, हमारे यहाँ का जो मूल रूप का बीज था वो बीज रह नहीं गया है। किसान चूंकि हमेशा बाहर से बीज खरीदते हैं और उसको बदलते हैं, पैसा लगाते हैं, तो बीज भी नहीं रही। तीसरा चीज क्या होता है, रोग का आक्रमण। रोग का आक्रमण कीड़ों का इस तरीका से आक्रमण होता है कि प्रतिरोधक क्षमता जो होना चाहिए वो नहीं होने के चलते पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो आधुनिक खेती हम लोग अपनाए उसका लाभ की अपेक्षा दुष्परिणाम ज्यादा हुआ है।
1: जी जी,
0: और प्राकृतिक खेती पे जहाँ तक हम लोग बात करेंगे, इसमें जमीन के साथ हम कम छेड़छाड़ कर रहे हैं। जमीन के साथ कम छेड़छाड़ करने का मतलब होता है कि जो हमारे प्राकृतिक रूप से खेती में सहयोग करने वाले कीटाणु हैं उनकी संख्या को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं। जो वीड है, घास पतवार कहते हैं, उनकी संख्या को भी हम विनष्ट नहीं कर रहे हैं,
1: नहीं।
0: उनकी एक संख्या को हम नियंत्रित कर रहे हैं।
1: नियंत्रित कर रहे हैं।
0: तो जब किसी को आप नियंत्रित कर रहे हैं तो उनका एक सही फल आपको देखने को मिलता है।
1: जी।
0: लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम लोग प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं तो इसमें चूंकि ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है जो लोगों को दिग्भ्रमित होने की जरूरत है, इसमें सारा कुछ हम लोग पौधा का प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, मॉइस्चर को भी मेंटेन कर रहे हैं, बीज का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, सारी चीज आधुनिक रूप में कर रहे हैं। लेकिन हमारी तकनीक क्या हो रही है, स्वदेशी तकनीक है जो यहाँ पे लोकली अवेलेबल है, किसान के घर में जो अवेलेबल है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो यह हमेशा सफलीभूत होने की ज्यादा परिणाम पाया गया है कि यह सफलीभूत है। पुणे में इस पे बहुत बड़ा शोध हुआ है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे किसानों को विश्वास दिलाने की जरूरत है तो वहां पे किसान लोग अपने खेत में, जैसे लोग बोलते हैं कि अपने खेत के एक भाग में करें, अपने खेत के एक भाग में करने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि यदि केमिकल फर्टिलाइजर बगल के खेत में है और बगल में आप प्राकृतिक खेती का परिणाम देखना चाहेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जमीन आप बगल में कीटनाशक का, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग किए

0: ये देखा जाए कि प्राकृतिक जो हमारे मित्र कीट थे वो तो मारे गए, फायदा नहीं करेंगे, खेत में हमने खाद दिया तो भीतर से भीतर रिस करके इसके जमीन को प्रभावित करते हैं। तो इसके परिणाम को देखने के लिए किसान को स्थानीय स्तर पे एक पैच बनाना होगा जहाँ पे लोग कम से कम 5 एकड़ 10 एकड़ के एरिया में इसका परिणाम देख सकते हैं। एक किसान एक पार्ट को देख करके हमेशा फेलियर होगा
1: जी। और इससे जुड़ी हुई कोई बातें जो छूट रही हो?
0: इससे जुड़ी हुई बातें मैं किसानों को जैसे बीजामृत बनाने के लिए एक सिंपल सा टेक्निक देना चाहूँगा, संक्षिप्त में दे रहा हूँ। किसान को बीज उपचार के लिए बीजामृत बनाने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए किसान भाइयों को 5 किलो गोबर का खाद, 5 किलो फ्रेश गोबर का खाद गाय का, और 5 लीटर गोमूत्र होना चाहिए, 50 ग्राम चूना, 1 किलो जो पलास या पलास के नीचे का वो मिट्टी को ले, और 20 लीटर पानी ले। वो क्या करेंगे कि 5 किलो जो गोबर लेंगे उसको किसी कपड़ा में मसलिन क्लॉथ जो हम लोग बोलते हैं उसमें करके 20 लीटर पानी में रात भर डुबा करके रखेंगे, और दूसरा दिन सुबह उसको मैसेंगे इस तरीका से कि जो उसका तत्व है वो पानी में घुल जाए, और उसी समय में पैरेलल में उसी दिन जो 50 ग्राम चूना है उसको 1 लीटर पानी में डाल करके रखेंगे। दूसरा दिन इस दोनों को मिक्स कर लेंगे और उसको पूरी तरीका से मिला लेंगे, और जो 1 kg प्लास के नीचे का पेड़ के नीचे का मिट्टी था वो उसको मिला करके एक घोल तैयार कर लेंगे। इस घोल से बीज का उपचार करेंगे, जैसे पहले बीज का उपचार करते थे मिला करके छिड़क करके और छाया में सुखा देते थे, इसके बाद बीज की रुपाई करते बुआई करते थे। तो इसका किसान शुरुआत में प्रयोग करके देखें, उनको सही परिणाम निकलेगा, और जो भी जो बीज उनका होगा खेत में वो स्वस्थ होगा, पुष्ट होगा, और रोग से लड़ने की क्षमता होगी। तो कम से कम लोग इस बीजामृत का प्रयोग करके किसान देखें
1: जी। आप थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी के प्रक्षेत्र प्रबंधक डॉक्टर दिलीप कुमार पांडे। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और प्राकृतिक खेती से जुड़ी जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: पलामू जिला में प्राकृतिक खेती की संभावनाएं, इस विषय पर अभी आप भेंटवार्ता सुन रहे थे। विषय भेंटवार्ताकार थे कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे जी, बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब आज के विचार में बात करते हैं बकरी पालन से फायदे।
3: ग्रामीण भाइयों, बकरी पालन ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने और स्वरोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है। कम लागत में अधिक लाभ मिलने के कारण इसे गरीबों की गाय भी कहा जाता है। बकरी पालने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कम लागत में भी आप शुरुआत कर सकते हैं। बकरी पालन कम पूंजी में भी शुरू किया जा सकता है और ये अच्छी आय का स्रोत भी है, जिसे दूध, मांस और बच्चों की बिक्री से नियमित आय होती है। कम जगह की इसमें आवश्यकता होती है। बकरियों को पालने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। बकरियां पेड़ पौधों की पत्तियां, झाड़ियां और घास खाकर भी अच्छी तरह से पाली जा सकती है। बकरियां कम समय में बच्चे देती है, जिससे उनकी संख्या और आय दोनों बढ़ती है। ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार का अच्छा माध्यम है। बकरी का दूध सुपाच्य और पौष्टिक होता है। बकरी का गोबर खेतों के लिए उत्तम जैविक खाद है। अन्य बड़े पशुओं की तुलना में बकरियों का पालन अपेक्षाकृत आसान और कम जोखिम वाला होता है। कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण, ऋण और अनुदान की सुविधा भी उपलब्ध होती है, और बकरी पालन किसानों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के लिए कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। उचित देखभाल, संतुलित आहार और समय पर टीकाकरण से भी इसे अत्यंत लाभदायक बनाया जा सकता है।

और कुछ नस्लों से ऊन या बाल भी मिलते हैं। बकरी पालन केवल एक व्यवसाय नहीं है ग्रामीण भाइयों, बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम है। वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन अपनाकर कम लागत में अधिक लाभ कमाया जा सकता है, जिससे परिवार की आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

और अब आज का मौसम आपको बता दें। आज पलामू में अधिकतम तापमान रहा 33.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस। सापेक्षिक आर्द्रता 70% से 91% रिकॉर्ड की गई। हवा की गति 2.2 से 4.6 किलोमीटर प्रति घंटा रही।

0: और चलते चलते अब आज की नसीहत।
1: आज की नसीहत में अगस्त माह के प्रमुख कृषि कार्य आपको बता दें। अगस्त का महीना खरीफ फसलों की देखभाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय किसानों को कुछ खास कृषि कार्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, उड़द और मूंग की फसलों की नियमित निगरानी करें। खेतों से खरपतवार निकालकर समय पर निराई गुड़ाई करें। फसलों में आवश्यकतानुसार टॉप ड्रेसिंग यानी ऊपरी खाद भरें
0: और वर्षा के कारण खेत में जल भराव ना होने दें और उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। कीट और रोगों की नियमित निगरानी करें और आवश्यकता होने पर समन्वित कीट प्रबंधन अपनाएं। सब्जियों की बुआई और रोपाई करें और पौधों की उचित देखभाल करें। फलदार पौधों में खाद, सिंचाई और पौध संरक्षण का कार्य करें। पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था करें और नेपियर, ज्वार या बाजरा जैसे चारे की फसलों की देखभाल करें। पशुओं का समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। वर्षा जल का संरक्षण करें और खेत की मेड़ों को मरम्मत करें।
1: अगस्त में खेत की नियमित देखभाल, संतुलित पोषण और समय पर कीट रोग नियंत्रण से खरीफ फसलों की अच्छी वृद्धि होती है और किसान भाइयों इससे अधिक उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो ग्रामीण भाइयों, इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम ग्रामीण सभा से अब दीजिए रागनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण सभा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में जेपीएससी में अनियमितता के मुद्दे पर विपक्ष ने अदालत की निगरानी में की सीबीआई जांच की मांग। सरकार ने कहा सत्र में चर्चा के दौरान हर सवाल का देंगे जवाब। राज्य सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच वार्ता की पहल तेज। संशोधित सूची जारी, बातचीत के लिए 10 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधि मंडल तैयार। जमशेदपुर से 10 करोड़ नशामुक्त भारत अभियान की शुरुआत। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा जन जागरण से बने जन आंदोलन। एनटीपीसी की पकरी बरवाडीह खदान को फिर मिला 5-स्टार सम्मान। लगातार दूसरे वर्ष देश में पहले स्थान पर रही कोयला खदान। और डोरंड कप में एससी दिल्ली की शानदार जीत। रांची में डिफेंडर्स एफसी को 7-0 से दी करारी शिकस्त। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन छात्रों के आंदोलन और जेपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा सदन में छाया रहा। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने परीक्षाएं रद्द कर पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की।

0: भाई इन मुद्दों पर छात्र नौजवान सड़क पर बैठे हुए हैं, बारिश में बैठे हुए हैं, और सरकार को एग्जाम रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से करानी चाहिए। कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इस पर आप कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, नहीं तो लगातार ऐसे ही चलते रहेगा।
1: वहीं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इस विषय पर पहले से ही चर्चा हो चुकी है और विपक्ष को अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा।
2: जो आप सरकार के ऊपर या जो आपके मन में शंकाए हैं, आप अपने उस वाद विवाद के क्रम में बोलिए, सरकार पूरी तरह से उत्तर करने के लिए तैयार है। बीच में सदन को डिस्टर्ब करने का कोई अधिकार विपक्ष को नहीं होना चाहिए अध्यक्ष महोदय।
1: रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों ने सरकार के साथ वार्ता के लिए 10 सदस्य प्रतिनिधिमंडल की अंतिम सूची जारी कर दी है। प्रतिनिधिमंडल में रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, अंकित राज, कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी, रविंद्र कुमार रवि, आनंद कुमार और अंकित कुमार शामिल हैं। अब सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच प्रस्तावित वार्ता पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इधर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में निकाले गए छात्र मार्च के दौरान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर एक युवक ने कथित रूप से काली स्याही फेंक दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि हमला करने वाला युवक एक छात्र था और उसने खुद को एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बताया। नेहा बोरा ने घटना के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए झारखंड सरकार से छात्रों की मांगों का समाधान करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। विधानसभा में आज भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर कल और परसों यानी 8 और 9 अगस्त को मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र भारतीय नागरिक फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।
3: 8 अगस्त, 9 अगस्त शनिवार रविवार को स्पेशल कैंप आयोजन किया जा रहा है। पात्र भारत का नागरिक, उनका उम्र 1 अक्टूबर 2026 में 18 हो गया, नहीं मतलब 18 हो रहा है, उनका सबसे अनुरोध है फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करें ताकि आपका नाम हम लोगों का मतदाता सूची में शामिल कर सकेंगे। साथ ही साथ किसी परिवार में 2 और अधिक बूथ में रहने पर आपका फॉर्म 8 भरवाएं।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLBC को एक प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की। बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक गुरु प्रसाद गोंड के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को 96वीं राज्य स्तरीय बैंकर समिति की जून 2026 की स्मारिका पुस्तिका भेंट की। इस अवसर पर समिति के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
4: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5,000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक।

0: ब्रांड की शानदार प्रस्तुतियाँ, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
1: यहाँ मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खान पान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज जमशेदपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 10 करोड़ नशामुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने नशा मुक्ति को स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण का सामूहिक संकल्प बताते हुए कहा कि यह अभियान जन जागरण से आगे बढ़कर जन आंदोलन का रूप ले। राज्यपाल ने कहा कि परिवार, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों, मीडिया और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से ही नशा मुक्त समाज बनाया जा सकता है। राज्यपाल ने आज जमशेदपुर में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के चौथे दीक्षांत समारोह में कहा कि जीवन की नई यात्रा का यह प्रारंभ है और उन्होंने विद्यार्थियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों का अनुसरण करते हुए राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने को कहा। हजारीबाग जिले की एनटीपीसी की पकरी बरवाडी कोयला खदान को सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और जिम्मेदार खनन के लिए एक बार फिर 5-स्टार रेटिंग मिली है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोयला मंत्रालय के कोयला नियंत्रक कार्यालय ने यह रेटिंग प्रदान की है। लगातार दूसरे वर्ष पकरी बरवाडी खदान देश की 5-स्टार रेटिंग प्राप्त कोयला खदानों में पहले स्थान पर रही है।
3: ये पकरी बरवाडी को ये दूसरा साल 5-स्टार मिला है और दूसरा साल लगातार ये फर्स्ट रैंक में आई है कंट्री में। ऑल ओवर आई थिंक 206 माइंस है ओपन कास्ट, उसमें फर्स्ट पोजीशन लाना ये अपने आप में एक बहुत गर्व का बात है और हम लोग सारे एनटीपीसीएंस इस बात से बहुत ही गर्वान्वित हैं। और ये उच्च स्थान पर आके ये उच्चतम अपने दक्षता को हम लोग हमेशा मेंटेन रखेंगे।
2: आईआईटी आईएसएम धनबाद के खनन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर तथा टेक्समिन के निदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित प्रतिष्ठित एट होम समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। प्रोफेसर धीरज कुमार ने बताया कि 15 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में देश के चुनिंदा वैज्ञानिक और शिक्षाविद शामिल होंगे।
4: So, हमारा नॉमिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से हुआ था क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन जो है माइनिंग मिनरल अर्थ साइंसेज क्रिटिकल मिनरल एरिया में है और हमें प्रेसिडेंट मैडम के यहाँ से एक इन्विटेशन आया है एट होम रिसेप्शन में शामिल होने के लिए 15 अगस्त की संध्या को।
2: रांची के हेनो में आज भारत सरकार ने आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलएमक्यू के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया। यह कार्यालय पूर्वोत्तर तथा 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिव्यांगजनों की मदद करेगा। रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए डूरंट कप ग्रुप सी के मुकाबले में एससी दिल्ली ने श्रीलंका के डिफेंडर्स एफसी को 7-0 से करारी शिकस्त दी। एससी दिल्ली ने पूरे मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखते हुए बड़ी जीत दर्ज की। और अब अंत में मुख्य समाचार। जेपीएससी में अनियमितता के मुद्दे पर विपक्ष ने अदालत की निगरानी में की सीबीआई जांच की मांग। सरकार ने कहा सत्र में चर्चा के दौरान हर सवाल का देंगे जवाब। राज्य सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच वार्ता की पहल तेज। संशोधित सूची जारी। बातचीत के लिए 10 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल तैयार। जमशेदपुर से 10 करोड़ नशामुक्त भारत अभियान की शुरुआत। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा जन जागरण से बने जन आंदोलन। एनटीपीसी की पकरी बरवाडी खदान को फिर मिला 5-स्टार सम्मान। लगातार दूसरे वर्ष देश में पहले स्थान पर रही कोयला खदान। और डोरंट कप में एससी दिल्ली की शानदार जीत। रांची में डिफेंडर्स एफसी को 7-0 से दी करारी शिकस्त। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
1: जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लेते हुए जमशेदपुर के दो मुहानी नदी संगम तट पर एक पौधा भविष्य के नाम अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पद्मश्री चामी मुर्मू, जनप्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों और नागरिकों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान बन्ना गुप्ता ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए आज से ही प्राकृतिक संरक्षण जरूरी है।
2: जिस तरीके से पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव से चिंतित है और ग्लेशियर डूबने के ग्लेशियर जो है गर्मी से कुछ कुछ गलने लगा है, कई देश ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में पानी से विलुप्त हो जाएंगे, कुछ जगह ऐसी स्थिति है जहां पर भूगर्भ का जल जो है वो पाताल लोक से भी नीचे चला गया है, पानी के लिए हाहाकार मचा है। एक तरफ लोग डूबने के कगार पर है, एक तरफ पानी की बूंदों के लिए लोग तरस रहे हैं। तो ये अतिवृष्टि अनावृष्टि ये एक
1: जमशेदपुर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त भारत की शपथ ली। इस दौरान युवाओं ने कहा कि वे इस संदेश को अपने परिवार और समाज तक पहुंचाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
3: बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, पीएम मोदी ने हमें बहुत अच्छे से बहुत कुछ नशा मुक्त भारत के बारे में बताया, उन्होंने युवाओं को जेंजीज को भी संबोधित किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का।
1: जमशेदपुर में पुलिस ने अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक इहतेशाम वकारिब के नेतृत्व में क्यूआर कोड आधारित डिजिटल बीट पुलिसिंग सिस्टम की शुरुआत की है। नई व्यवस्था के तहत पूरे जिले को 206 बीटों में बांटा गया है और प्रत्येक बीट की जिम्मेदारी एक पुलिस पदाधिकारी को सौंपी गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीट पदाधिकारी नियमित गश्त के दौरान चिन्हित स्थानों पर लगे क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, जिससे उनकी उपस्थिति और गश्त की रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग हो सकेगी।
4: ऑलरेडी जो पेट्रोलिंग हमारी चल रही है उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम इनहांस के लिए डिजिटल बीट पुलिसिंग का शुरुआत किया है और पूरे शहर को और ग्रामीण क्षेत्र को 206 बीट में बांटा गया और शहर में 102 है, ग्रामीण क्षेत्र में 104, ताकि हमारी जो ओपी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए। शहरी क्षेत्र के सभी बीट में बीट ऑफिसर्स थाना से डिप्यूट किया गया है ताकि हम लोग अपराध पे जो क्राइम आंकड़ा है उसकी एनालिसिस करके ये क्राइम हॉटस्पॉट मैपिंग करके 5 साल का डेटा के अनुसार ये मैपिंग किया गया है। लगभग 1000 क्यूआर कोड सभी लगे हैं जो की संख्या बढ़ के फ्यूचर में 2000 हो जाएगा।
1: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को जमशेदपुर में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर शहर में सांस्कृतिक झांकियां, पारंपरिक नृत्य, सम्मान समारोह और जनसभा का आयोजन होगा। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
0: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

प्रस्तुत है झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं यूएनआई रांची के ब्यूरो चीफ विनय कुमार। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज जेपीएससी और जेएसएससी की प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी विधायकों के तीखे विरोध और नारेबाजी के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही पूरी तरह प्रभावित

रही। बढ़ते हंगामे को देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ विपक्षी विधायक इस मुद्दे पर वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में आयोजित होने वाली लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अभ्यर्थी इस भीषण बारिश के बावजूद अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की। विपक्ष के इस रवैये पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है और कार्य मंत्रणा की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा कराने पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा कि विधिवत वाद विवाद के दौरान विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा, इसलिए सदन को बाधित करना अनुचित है। बहस के दौरान प्रदीप यादव ने सीबीआई जांच की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीआईडी जांच से किसे डर लग रहा है, आज तो खुद सीबीआई की निष्पक्षता और भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने पूर्ववर्ती मामलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी जेपीएससी परीक्षाओं में भी अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे और उनकी सीबीआई जांच भी कराई गई थी, लेकिन उस जांच का नतीजा निकला। इस बीच विधानसभा में विपक्षी सदस्य अपनी मांग को लेकर वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा नहीं रुकने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष के विरोध के बीच विधानसभा में चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्त वर्ष का पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। अनुपूरक मांगों पर चर्चा 10 अगस्त को होनी है। इससे पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड में बैंकिंग परिदृश्य जून 2026 प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस प्रतिवेदन में दिए गए संदेश में कहा कि झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषक समुदाय की आर्थिक सुरक्षा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा ग्रामीण आजीविका के सुदृढ़ीकरण के लिए समयबद्ध और पर्याप्त संस्वागत ऋण की उपलब्धता आवश्यक है। श्रीमती तिर्की ने कहा कि राज्य के बिरसा किसानों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। बिरसा किसानों को बैंकिंग सेवाओं, केसीसी तथा आवश्यकता अनुसार कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए संस्थागत ऋण सुविधाओं से जोड़कर उनकी वित्तीय पहुंच और आर्थिक क्षमता को सुदृढ़ किया जा सकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंक शाखाओं, कृषि विभाग तथा जिला स्तर के संबंधित पदाधिकारियों के समन्वित प्रयास अपेक्षित हैं। बाद में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही सोमवार 10 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे यूएनआई रांची के ब्यूरो चीफ विनय कुमार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। एक रंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुछ रोमांटिक ड्यूट्स।

हम भी इंसान हैं फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। आवाज़ें थी अलीशा चिन्नई और अमित कुमार की। शब्द रचना अनजान की थी और इसकी तर्ज बनाई थी बप्पी लाहिरी ने। अगला गीत आइए सुनते हैं शेषनाग फिल्म से। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यार।

फिल्म का नाम है सिक्का। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। इंदिवर की शब्द रचना है और तर्ज बप्पी लाहिरी की है।

0: सिक्का फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की, शब्द रचना इंदिवर की थी और इसकी धुन बनाई थी बप्पी लहरी ने। आज के एक रंग कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कुछ रोमांटिक ड्यूट्स। इसी के साथ एक रंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है रोजगार से जुड़ी बातें कार्यक्रम उड़ान, संकलन एवं वाचन प्रीति कुमारी का है।
1: श्रोताओं नमस्ते, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उड़ान। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। आज कार्यक्रम उड़ान में मैं बात करूंगी लोन के बारे में। जी हां, पढ़ाई के लिए लोन से मिलेगी मदद, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन सही ढंग से सही जगह पे पहुंच करके और कैसे मिल सकता है आपको सुटेबल सिचुएशन के अनुसार आपको लोन, और बैंकों की क्या क्या शर्तें होती हैं, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगी। मेडिकल या इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले की बात हो या विदेश में पढ़ाई हो या अपस्किलिंग बढ़ाना हो, उच्च शिक्षा के ऊंचे खर्च वहन करने में एजुकेशन लोन काफ़ी मदद करता है, लेकिन इसकी शर्तें, फ़ायदे और नुकसान के बारे में समझ कर के ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ये बात तो सच है दोस्तों, अगर आपको लोन लेना है या फिर किसी भी क्षेत्र में आपको पैसा लेना है, तो पहले तो उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होना चाहिए कि आप अगर कर्ज ले

रहे हैं, तो आपको कर्ज ले रहे हैं तो चुकाना ही है। तो ये किन-किन शर्तों पे आपको मिलेगी, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। बड़ी प्रवेश परीक्षाओं के बाद छात्रों के लिए अगला पड़ाव संस्थान में प्रवेश लेने का होता है। ऐसे में शिक्षा के शुल्क व खर्च एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। एजुकेशनल लोन इसमें काफ़ी मदद कर सकता है, बशर्ते कि सावधानी पूर्वक और सही जानकारी के आधार पर इसका चयन किया गया हो। महामारी के बाद भारत में एजुकेशनल लोन के क्षेत्र में बीते साल से ही तेजी दर्ज की गई है, मतलब देखा जा रहा है कि लोग एजुकेशनल लोन ज़्यादा ले रहे हैं। आरबीआई के डेटा की अगर हम बात करें तो बीते साल 12 नवंबर 2022 तक हुए 12 महीनों के एजुकेशनल लोन प्रदान किए जाने में 12% की तेजी दर्ज हुई है। एक अन्य डाटा की अगर हम बात करें तो 10 सालों में विदेश में पढ़ाई के लिए एजुकेशनल लोन लेने वाले छात्रों में 215% की लगभग वृद्धि दर्ज हुई है। इस तरह की वृद्धि के पीछे एक बड़ा कारण होता है कि सरकार की ओर से एजुकेशनल लोन की प्रक्रिया को सहज और सुविधाजनक व पारदर्शी बनाने पर काफ़ी काम किया गया है। आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने लिए बेहतर भविष्य गढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी ही बातों को मैं आपके सामने रख रही हूँ। अब हम बात करते हैं कि पात्रता आखिर क्या है, मतलब लोन देने की बैंकों की। एजुकेशनल लोन को लेकर के हर बैंक या कोई भी ऋणदाता संस्थान जो है उसके अलग अलग पात्रता या मापदंड होते हैं। अब वो क्या है, तो कुछ केवल विदेश में पढ़ाई के लिए शिक्षा लोन देते हैं, जबकि अन्य अंतर्देशीय और विदेश में पढ़ाई के लिए लोन देते हैं। कहीं पर एक को एप्लीकेंट जरूरी हो सकता है, जैसे कि माता पिता या अभिभावक या जीवन साथी आदि। लोन केवल विशिष्ट कोर्स या विशिष्ट देशों में कराए जा रहे पाठ्यक्रमों के लिए ही उपलब्ध हो सकता है। अब हम बात करते हैं ब्याज दरों के बारे में। ब्याज दरें और प्रोसेसिंग के शुल्क का खर्च छात्र को ही वहन करना होता है। इस तरह के लोन और एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। इसी के साथ क्रेडिट रेटिंग, कोलेट्रल जिसके बदले लोन ले रहे हो, जैसी चीज़ें भी इसमें अंतर पैदा कर सकती हैं। बेहतर हो कि आवेदन करने से पहले अपनी क्रेडिट रेटिंग को सुधार लें। श्रोताओं, जब कर्ज लेते हैं तो उन्हें चुकाना भी होता है, तो अब रीपेमेंट की क्या शर्तें हैं? लोन चुकाने की शर्तें ऋणदाता संस्थानों पर निर्भर करती हैं। मोरेटोरियम ये वो शब्द है जिसमें जिस अवधि में लोन चुकाना नहीं होता है के साथ दो विकल्प मिलते हैं। लोन राशि पर केवल ब्याज का भुगतान, पूर्ण या आंशिक। इसके प्रिंसिपल राशि का भुगतान मोरेटोरियम अवधि के बाद शुरू होता है। ब्याज दरें की आवश्यकता नहीं होती है। पढ़ाई की अवधि के दौरान ब्याज लोन की राशि से जुड़ता जाता है और मोरेटोरियम यानी पढ़ाई और 6 महीने या 1 साल की अवधि के बाद किस्तें शुरू होती हैं। जब लोन मोरिटोरियम के बिना होता है तो कोर्स के खत्म होते ही भुगतान शुरू करना हो सकता है। इससे छात्र पर बोझ आ जाता है, इसलिए लोन लेने से पहले ही रीपेमेंट की शर्तें जानना जरूरी है ताकि लोन चुकाने में कोई व्यवधान ना आए। लोग लोन लेते हैं उनको ये बातें भी जाननी चाहिए। नॉन टेक्निकल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, फोटोग्राफी, कुलिनरी मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों के लिए एजुकेशनल लोन किसी प्रतिष्ठित पब्लिक सेक्टर बैंक से मिलना मुश्किल हो सकता है। विभिन्न बैंकों के लोन को लेकर के छानबीन व तुलना कर लें, फिर चयन करें। एजुकेशनल लोन EMI कैलकुलेटर व कॉलेज कोर्सेज एक्सपेंसेस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके निर्णय लें। अच्छे रिकॉर्ड वाले बैंक चुनें, उनकी रिव्यू और रेटिंग देखें। जहां तक हो नेशनलाइज सरकारी बैंक को चुनें। लोन रीपेमेंट यानी चुकाने की सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। अपनी भविष्य की आय को लेकर के ईमानदारी और यथार्थपूर्ण नज़रिया बरतें।
ताकि लोन चुकाने के समय आए तो आपको यह बोझ फील ना हो। विकल्पों पर भी विचार करें, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब, स्कॉलरशिप। इस तरह लोन राशि को कम से कम करने में मदद मिल सकती है। श्रोताओं, कुछ लोग हैं जो नॉर्मल कोर्स भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये भ्रांति फैली हुई है कि एजुकेशनल लोन मेडिकल इंजीनियरिंग एमबीए के पाठ्यक्रमों के लिए ही मिलता है। परंतु इस संदर्भ में सच यह है कि एजुकेशनल लोन प्रत्येक उस पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध है जो आप करना चाहते हैं। चूँकि सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम का शुल्क अधिक नहीं होता है, अतः डिप्लोमा या डिग्री स्तर के वोकेशनल कोर्स के लिए भी छात्रों के आवेदन बैंकों को प्राप्त होते हैं और इस भ्रांति को आधार मिलता है। यह भी समझें कि पढ़ाई के लोन की शर्तें हर कोर्स के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं लोन लेने के लिए आपकी सुविधा के अनुसार। जरूरत भर ही लोन लें। छात्रों को चाहिए कि लोन की राशि कम से कम रखें तो बेहतर होगा। कम राशि पर ब्याज पर बचत होगी और लोन जल्दी वापस किया जा सकता है। ज़्यादा लोन लेने पर छात्र पर बेवजह बोझ आता है, साथ ही जैसे ही सक्षम हो उसे चुकाना शुरू करें और संभव हो तो अवधि से पहले पूरा चुका दें, ताकि इसका कुल लागत कम की जा सके। यानी आप प्री पेमेंट करने के विकल्प पर सोच सकते हैं। लोन लागत कम करने के अन्य विकल्पों पर भी जानकारी लें। उच्च शिक्षा के लिए लोन पर टैक्स लाभ भी मिलता है, इसकी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, कुछ स्कीम भी है, इसके बारे में भी हम लोगों को जानना चाहिए। भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार की ओर से कई योजनाओं के माध्यम से इंटरेस्ट सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है। इन सब्सिडीज़ में सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडीज स्कीम, पढ़ाओ प्रदेश स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडीज स्कीम आदि शामिल है। इसके अलावा अन्य कई स्कीम जैसे कि क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशनल लोन, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट आदि शामिल हैं। ये एक सीमा तक गारंटी उपलब्ध कराती है और कुछ योजनाएं इनलैंड स्टडीज़ के लिए उपलब्ध हैं और कुछ विदेश में पढ़ाई करने में सहायता दी जा रही है। इनमें से हर एक स्कीम के लिए पात्रता शर्तें अलग हैं। छात्रों को चाहिए कि किसी भी एजुकेशनल लोन के लिए आवेदन करने से पहले ऋण की कुल लागत को कम करने के लिहाज से इन स्कीम की उपलब्धता के बारे में भी पता कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशनल लोन के लिए बैंकों की शर्तें क्या हैं। विभिन्न बैंकों में एजुकेशनल लोन की व्यवस्था को प्रसार दिया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से लेकर के निजी बैंकों और विभिन्न राज्य सरकारों में मेधावी छात्रों की पढ़ाई के लिए कम दरों पर एजुकेशनल लोन उपलब्ध कराए गए हैं। और किन किन वर्गों में मिल सकता है ये एजुकेशनल लोन, आइए आपको बताते हैं। राष्ट्रीयकृत सरकारी बैंक। भारत के एजुकेशनल लोन देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रारूप लगभग एक जैसा है। यहाँ कुल तीन कैटेगरी में एजुकेशनल लोन मिल सकता है। पहला कैटेगरी है ₹4 लाख तक का लोन। अधिकतम ₹4 लाख तक का लोन के लिए आपको किसी गारंटर या किसी कोलेट्रल यानी गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति आदि की आवश्यकता नहीं होगी। यदि दाखिला किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में हुआ है तो इस आधार पर बैंक आपको शिक्षा ऋण देने का विचार कर सकता है। दूसरा है 4 लाख से अधिक और 7.5 लाख से कम का लोन। इस ब्रैकेट की लोन राशि के लिए आर्थिक रूप से संपन्न गारंटर की आवश्यकता होगी, लेकिन कोई कोलेट्रल प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा है ₹7.5 लाख से अधिक का लोन। देश या विदेश में पढ़ने के लिए आपको 7.5 से अधिक एजुकेशनल लोन के लिए, जहां एक ओर आपसे कम से कम एक आर्थिक रूप से संपन्न गारंटर
देना होगा, वहीं कोई कोलेटरल भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

0: यदि आप विदेश में पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इसी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। निजी बैंकों की कुछ अलग शर्तें हैं। देश के निजी बैंकों के द्वारा दिया जाने वाला एजुकेशनल लोन राष्ट्रीयकृत सरकारी बैंकों की तुलना में थोड़ा महंगा और कठिन है। यहाँ किसी भी लोन के लिए छात्र के साथ एक गारंटर भी होता है जिसे को एप्लीकेंट कहा जाता है। निजी बैंकों से आप कुछ लोन 6 कैटेगरी में एजुकेशनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी कैटेगरी को कॉलेज की रैंकिंग के अनुसार निर्धारित किया गया है। जनरल कैटेगरी में 1 लाख रुपए से 7.5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। यदि आप निजी बैंक के 1 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक का लोन चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक मजबूत गारंटर या को एप्लीकेंट की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि इस ब्रैकेट के लिए आपको किसी कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होगी। अब आती है बारी प्राइम सी कैटेगरी की। इसमें आप 15 लाख तक का एजुकेशनल लोन ले सकते हैं। यहाँ भी साथ में आपको को एप्लीकेंट होंगे जो कि गारंटर भी होंगे। प्राइम बी कैटेगरी के अंतर्गत 15 लाख से 40 लाख रुपए से कम एजुकेशनल लोन ले सकते हैं। ये उन छात्रों को मिल सकता है जिनका दाखिला खास रैंकिंग वाले संस्थानों में हो रहा हो। प्राइम ए कैटेगरी के लिए क्या है, तो यदि आपका दाखिला देश के टॉप संस्थानों जैसे IIT, NIT या IIM में हो जाता है तो प्राइम ए कैटेगरी के तहत 50 लाख रुपए तक की शिक्षा लोन मिल सकता है। यहाँ भी एक गारंटर या को एप्लीकेंट जरूरी है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उड़ान, संकलन एवं वाचन प्रीति कुमारी का था। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र

लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनुवारुल हक। लोकसभा की कार्यवाही आज भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित रही। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज सदन में फिर हंगामा किया, जिससे प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। सदन में गतिरोध के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य लोग गृह मंत्री के नाम का नारा लगाकर सदन से चले जाते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया, तब विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने लगे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहराते हुए नारा लगाने लगे। श्री बिड़ला ने भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है और उनसे प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि जब आप सब

भी उनसे प्रेरणा ले और देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए चर्चा संवाद करें तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और उसे चलने देना चाहिए। श्री बिड़ला ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। उन्होंने कहा कि वे हर बार आप सबसे आग्रह करते हैं लेकिन उनका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं होता है। अध्यक्ष ने कहा कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन की पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में ये विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग आज भी सवेरे से गृह मंत्री का नाम ले लेकर नारे लगा रहे हैं और हंगामा करके गायब हो जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह सुबह सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वे दिन भर संसद में ही रहते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि जिस दिन यहाँ चर्चा होगी, गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ जवाब देंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नियम के अनुसार जो विधेयक होता है उसी से संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि आप यहाँ निर्देश नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है, वे सरकार और आसन तय करते हैं। इसका पीठासीन दिलीप सैकिया ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया और कहा कि आप मन बनाकर आए हैं कि सदन चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 के कारणों तथा उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई आर्थिक विकास के मुख्य कारक है, रोजगार सृजन करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसी इकाइयां सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ समय के दौरान तकनीकी बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों के बढ़ते प्रयोग और बदलते विधिक परिदृश्य के कारण मूल अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है। इस विधेयक के माध्यम से 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निःशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। इसमें ये भी कहा गया है कि एमएसएमई की तरलता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन इकाइयों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के मामले में केंद्र के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों को उनके इनवॉइस के निस्तारण व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा। विधेयक में इस बात के भी प्रावधान है कि राज्य सरकारें अपने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी इस तरह के उपबंध करेंगी। इस दौरान सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कई सांसदों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को बताया कि इस साल 31 मई तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2000 से ज्यादा अस्पतालों को सूची से हटा दिया है और 1200 अन्य अस्पतालों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और लगभग 303 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण 2359 अस्पतालों को सूची से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में धोखाधड़ी के मामले में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्र

धोखाधड़ी रोधी इकाई संदिग्ध दावों का पता लगाने के लिए एआई और मशीन लर्निंग पर आधारित स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करती है। मंत्री ने कहा कि संदिग्ध माने गए दावों की भुगतान से पहले जांच 31 जुलाई 2026 तक 676 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना देश की आबादी के निचले 40% हिस्से को द्वितीय और तृतीय स्तर के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। ये योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। श्री नड्डा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पात्र लाभार्थियों के लिए लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, अस्पताल में भर्ती होने के लगभग 3 करोड़ मामलों को मंजूरी दी गई और योजना के अंतर्गत 5,000 से अधिक अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल के दौरान 8,400 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए। एक अन्य प्रश्न के जवाब में श्री नड्डा ने कहा कि 31 जुलाई 2026 तक देश में लगभग 96 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा बनाए गए थे, जिनमें से 5 करोड़ से अधिक खाते गुजरात में बनाए गए। उन्होंने कहा कि आभा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक अहम घटक है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी गतिरोध बना रहा। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि करो या मरो के आह्वान ने लाखों देशवासियों को सभी बाधाओं से ऊपर उठकर एकजुट होने और राष्ट्र की स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सभापति ने कहा कि गंभीर दमन, जेल और अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों ने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और देश की आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। उनके निस्वार्थ बलिदान और दृढ़ इच्छा शक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया तथा 1947 में देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की तभी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद में गृह मंत्री की लगातार अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार सभापति की टिप्पणियों का सम्मान नहीं करके सदन का अपमान कर रही है। कल सभापति राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा था कि वे विपक्ष के भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाएं और सदन में उनकी मौजूदगी की मांग पर विचार करें। विपक्षी दल 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति की ओर से इस मामले में कोई निर्देश नहीं दिया गया है और विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्र चलता है तब गृह मंत्री पूरे दिन सदन में मौजूद रहते हैं और मंत्री अपने मंत्रालयों के एजेंडे के अनुसार संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति ने केवल टिप्पणी की थी लेकिन कोई निर्देश नहीं दिया था। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हैं और फिर संसद से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने इस व्यवहार की निंदा की। हंगामे के बीच ही सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए कहा।
बीजू

जनता दल के सुलता देव ने पखाला भात की विशिष्टता और ओडिशा की परंपरा में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए इस व्यंजन को GI टैग देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पखाला भात केवल एक भोजन नहीं बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग की। भाजपा के प्रकाश चिक बाराइक ने उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण अपनी प्रतिभा को निखारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाजपा के अमरपाल मौर्य ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले राम दर्शन रेल पथ गलियारे के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के प्रमुख केंद्र रहे हैं तथा इन क्षेत्रों का संबंध भगवान राम के जीवन और उनसे जुड़ी आस्थाओं से है। उन्होंने कहा कि यदि राम वन गमन मार्ग से जुड़े प्रमुख स्थानों को एक ही रेल गलियारे के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। जब ये सदस्य अपने मुद्दे उठा रहे थे तो विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी और हंगामे कर रहे थे। हालांकि सभापति ने उनसे सदन की कार्यवाही चलने देने की कई बार अपील की, लेकिन इस अपील का कोई असर न होते देख उन्होंने 11:30 पर बैठक को दोपहर 12 तक स्थगित करने की घोषणा की। दोपहर 12 बैठक पुनः शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन से पूरक प्रश्न पूछने को कहा। सुमन ने ट्रेनों में कवच और सिग्नल प्रणाली लगाए जाने से संबंधित विषय पर पूरक प्रश्न पूछने के बजाय कहा कि सदन में गतिरोध कायम है और विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। सभापति ने सुमन को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सदस्य डॉ. एम थंबीदुरे से आज की प्रश्नावली में सूचीबद्ध से प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा। थंबीदुरे ने पूरक प्रश्न पूछा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन हंगामे की वजह से सदन में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन उनकी अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 12:04 पर बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

यादों के मौसम फिल्म से अभी आपने ये नगमा सुना। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और साथियों की। गीत लिखा था सलाहुद्दीन परवेज ने और इसकी तर्ज बनाई थी आनंद मिलन ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम की अगली पेशकश है जंगल लव फिल्म से। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की। समीर के बोल हैं और आनंद मिलन का संगीत।

जंगल लव फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की, गीतकार थे समीर और संगीतकार आनंद मिलन। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। पेशे खिदमत है कव्वाली का प्रोग्राम महफिल। फनकार हैं इकबाल साबरी और अफजाल साबरी। कलाम शायर हैं कैसर समस्तीपुरी।

0: याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे

0: संवाददाता से।
1: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
2: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
3: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार जेम के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम

0: प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। 2 दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मकदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान एनएफडीसी ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि एनएफडीसी और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फोन के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
5: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट

0: जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
2: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। पार्लियामेंट ने एमएसएमई तरक्याती बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद तेज तर अदायगी और तनाजात के जल्द इजाले को यकीनी बनाना है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में दहशतगर्दी, मुकासमत और तशद्दुद से पाक माहौल में ही पेशरफ्त हो सकती है। भारत ने बैनुल अक्वामी समंदर में महफूज और बिला रोक टोक जहाजरानी के अपने अज़्म को दोहराया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके दौरान मजमूई खरीदारी 20 लाख करोड़ रुपए मालियत से तजावुज कर गई है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में बहुत शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में भारत की तितली माझी ने उज्बेकिस्तान में खवातीन के 45 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। इंतहाई छोटी छोटी और दरमियानी दर्जे की सनअतों की फरोग के तरमीमी बिल 2026 को आज लोकसभा में मंजूरी के साथ पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया। इस बिल को राज्यसभा में पीर के रोज मंजूर कर लिया गया था। इस बारे में पेश है एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में नीट मामले पर तालिबे इल्मों के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोर शराबे के बाईस खलल पड़ा। अपोजिशन अराकीन के जरिए जारी शोर शराबे के बाईस दोनों ऐवानों की कार्रवाई जोहराने से कबल दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से दोनों ऐवानों में वक्फाए सवालात की कार्रवाई नहीं की जा सकी। इससे कबल दोनों ऐवानों में भारत छोड़ो तहरीक की 84वीं सालगिरह के मौके पर तमाम मुजाहिदीन आजादी को खिराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा की कार्रवाई इंतहाई छोटी छोटी और दरमियाने दर्जे की सनातों की फरोग तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी के साथ पूरी की गई। राज्यसभा ने पीर के रोज इस बिल को मंजूरी दे दी थी। चूंकि दोनों ऐवानों की कार्रवाई जल्द ही मुलतवी कर दी गई, इसलिए प्राइवेट मेंबर बिजनेस नहीं किया जा सका। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: भारत ने मुजवजा गैर मुल्की अतियात जाब्ता तरमीमी बिल से मुतालिक अमरीकी कानून साज के जरिए उठाए गए एतराजात को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि भारत

0: कानूनी मामलात उसके अंदरूनी मामलात हैं जिनके लिए पार्लियामेंट के जरिए फैसले किए जाते हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस सिलसिले में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। जनाब जायसवाल ने वाजे किया कि अमरीका समेत बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो गैर मुल्की फंड के लेन देन को मुंजबित करते हैं।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: भारतीय बहरी जहाजों और जहाजरानों के तहफ्फुज़ और सिक्योरिटी से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले को आला तरजीह देता है। उन्होंने कहा कि तमाम खलीजी खित्ते में भारतीय मिशन उन मालिक में जहाजरानी की वजारत और समंदरी हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे सातों दिन हेल्प लाइंस फाल हैं ताकि अगर किसी शख्स को मदद की जरूरत हो तो वो उन तक रसाई कर सके। ये हेल्प लाइंस पिछले कुछ महीनों से मुसलसल फाल हैं। उन्होंने कहा कि भारत बैनुल अक़वामी समंदर में महफूज और बिला रुकावट जहाजरानी और आजादाना तिजारत के लिए जोर देता रहा है। भारत ने तमाम फरीकैन पर जोर दिया है कि वो शहरी ढांचे और गैर फौजी बहरी जहाजों और जहाजरानों को निशाना बनाने से गुरेज करें। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने इस बात को दोहराया कि भारत का उस तकरीब में कोई किरदार नहीं था।
1: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इसराइली वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू के दरमियान गुज़िश्ता रात टेलीफोन बातचीत से मुतालिक वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दोनों लीडरों ने मगरबी एशिया में जारी सूरतेहाल और बदलते हुए हालात का जायजा लिया। उन्होंने मजीद कहा कि ये फोन इसराइल की जानिब से किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की इसराइल के साथ खुसूसी जामे शराकत दारी है। तर्जुमान ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहदे से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस सूरतेहाल पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान हालिया दिफाई माहदे से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इन मामलात पर करीबी नजर रखे हुए है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत अफ्रीका फोरम चोटी कॉन्फ्रेंस मुनक़द करना चाहता है। दोनों ममालिक मौजूद तारीख तय करने के लिए एक दूसरे के रबते में हैं और ये तय करेंगे कि चोटी कॉन्फ्रेंस कब मुनक़द की जा सकती है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात सिर्फ दहशतगर्दी, मुखासमत और तशद्दुद से आज़ाद माहौल में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज अपने तहरीरी जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की अपनी पॉलिसी पर अमलावरी और दहशतगर्दी का सरकारी पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल जारी रखे हुए है। वजीर खारजा ने कहा कि भारत ने पुलवामा दहशतगर्दी हमले के बाद पाकिस्तान को दिया गया सबसे ज्यादा पसंदीदा मुल्क MFN का दर्जा वापस ले लिया है और पाकिस्तान में बनने वाली या पाकिस्तान से बरामद की जाने वाली सभी अशिया पर कस्टम ड्यूटी 200% बढ़ा दी है। भारत ने पुलवामा दहशतगर्द हमले के बाद सिंध आबी माहदे को मुलतवी करने, अटारी चेक पोस्ट बंद करने, वीजा महदूद करने और मुतालिका मिशनों में सिफारतकारों और अफसरान की तादाद को कम करने समेत मुख्तलिफ सिफारती इकदाम किए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मजीद बताया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की फौजी कार्रवाई भी की गई है। भारत और श्रीलंका ने आज नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान बिजली के शोबे में दोतरफा तआवुन का जायजा लिया। इस दौरान भारतीय वफ्द की क्यादत बिजली, हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने की, जबकि श्रीलंका के वफ्द की क्यादत बंदरगाहों, शहरी आवाबाजी और तवानाई के वजीर अनुरा करुणा तिलक ने की। बिजली की वजारत के मुताबिक दोनों वजीरों ने मुजवजा श्रीलंका भारत HVDC इंटरकनेक्शन और संपूर शमसी बिजली प्रोजेक्ट समेत जारी दोतरफा पहलों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दोनों वजीरों ने सरहद पार बिजली की फरोख्त, काबिले तजदीद तवानाई, तरसील के बुनियादी ढांचे और सलाहियत साजी के शोबों में इश्तराक को वसत देने से मुतालिक इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। भारत ने टैरिफ पर मबनी मुसाबिकती नीलामी के फ्रेमवर्क के जरिए तरसील के निजाम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तौर पर तैयार करने का अपना तजुर्बा मुश्तरक किया। ब्रिक्स वज़राए तालीम की 13वीं मीटिंग आज भुवनेश्वर में कामयाबी के साथ इख्तिताम पज़ीर हुई। इस दौरान इत्तेफाक राय से ऐलामिये को अपनाया गया مرکزی وزیر

से और तकरीबन दुनिया की निस्फ आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आईआईटी दिल्ली के 57वें तकसीम असनाद से खिताब करेंगे। वजीर आजम 587 पीएचडी स्कॉलर्स और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा समेत आईआईटी दिल्ली से फारिग होने वाले 3000 से ज्यादा तलबा से खिताब करेंगे। इस बारे में आज नई दिल्ली में अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर रंगन बैनर्जी ने कहा कि जनाब मोदी होनहार तलबा में सदर जमहूरिया के गोल्ड मेडल, डायरेक्टर गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल समेत इदारे के सबसे बावकार इनामात तफवीज करेंगे। जनाब बैनर्जी ने मजीद कहा कि वजीर आजम आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में कायम एआई से चलने वाले हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग मरकज परम प्रज्ञ का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। भारत के कौमी सरकारी खरीदारी के प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM ने गुज़िश्ता 10 सालों में 20 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम मालियत की जामे मजमू तजारत का निशाना हासिल कर लिया है। GEM के का आगाज 9 अगस्त 2016 को किया गया था। इसका मकसद टेक्नोलॉजी, शफाफियत, कारकर्दगी और अच्छी हुक्मरानी के जरिए सरकारी खरीदारी के निज़ाम की काया पलट करना था।

0: खुद को सीईओ जाहिर करने वाले धोखे से खबरदार किया है। एक बयान में वजारत दाखिले ने कहा कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर नुकसान पहुंचाने वाली फाइलों के जरिए पेशावर और कारोबारी अफराद के व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने से मुतालिक वाकयात की शिकायतों में तेजी से इजाफा हुआ है। भारत ने महज 3 साल के अंदर 1000 किलोमीटर से ज्यादा सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन हासिल कर लिया है, जो कि मुकर्रर वक्त से काफी पहले हासिल कर ली गई पेशरफ्त की अक्कासी करता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में तीसरे इंडिया इंटरनेशनल फिनटेक फेस्टिवल से खिताब करते हुए ये बात कही। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और राजस्थान में कल शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के साथ गरज चमक और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक समेत शुमाल मशरकी भारत में कल के लिए शदीद बारिश के साथ गरज चमक और बिजली चमकने की भी पेशगोई की है। आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तुंद हवाएं चलने की भी पेशगोई की गई है। अंडमान निकोबार जजायर, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, तेलंगाना, गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कल इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है। इस दौरान कौमी राजधानी में गुज़िश्ता 24 घंटों में अच्छी बारिश हुई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक और बिजली चमकने के साथ साथ शदीद बारिश हुई। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जे हरारत 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी में फर्क पड़ा और बहुत से इलाकों में ट्रैफिक जाम हुआ। मजीद बरां, भारत के महकमे मौसमियात ने कल के लिए हल्की से औसत दर्जे की बारिश होने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद अबी।
0: इस दौरान केरलम के 4 जिलों में बहुत शदीद बारिश के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: शिमाली केरलम के अजला कासारागोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये अजला आज दोपहर तक ऑरेंज अलर्ट के तहत थे। दीगर 4 अजला में भी शदीद बारिश के सबब ऑरेंज अलर्ट जारी है। केरलम के बकिया 6 अजला में येलो अलर्ट नाफिज है। रियासत के तमाम अजला में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से बारिश के सबब अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। शनिचर के रोज के लिए 10 अजला में येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। बारिश की शिद्दत में इतवार से कमी आने का इम्कान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलारूथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में नौजवानों और जूनियर एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारत की वेट लिफ्टर तितली माजी ने 45 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने कुल 145 किलोग्राम वजन उठाकर तमगा अपने नाम किया। इसी मुकाबले में भारत की परिश्मिता गोगोई ने 4th मुकाम हासिल किया है। ये चैंपियनशिप 14 अगस्त तक जारी रहेगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने MSME तरक्याती तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद तेज तर अदायगी और तनाजात के जल्द इजाले को यकीनी बनाना है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त, दहशतगर्दी, मुखासमत और तशद्दुद से पाक माहौल में ही हो सकती है। भारत ने बैनुल अक्वामी समंदर में महफूज और बिला रुकावट जहाजरानी के अपने अज़्म को दोहराया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके दौरान मजमू खरीदारी 20 लाख करोड़ रुपये मालियत से तजावुज कर गई है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और ओडिशा में बहुत शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की तितली माजी ने उज़्बेकिस्तान में खवातीन के 45 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

जुदा हो रहे थे और शायर दोस्त ने अपने फिल्मी दोस्त से विदा लेते हुए उसे एक शेर उपहार में दिया। कतील शिफाई ने एक पर्ची पर लिख कर दिया था, उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी हरजाई की। ये पर्ची उस लड़के ने संभाल कर रख ली। देश के विभाजन के वक्त लाहौर से मुंबई आने वाला वो प्रोडक्शन मैनेजर था जे ओम प्रकाश। जे ओम प्रकाश आगे चलकर फिल्मी दुनिया के एक बड़े निर्माता और निर्देशक बने। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई।

जी ओम प्रकाश का जन्म 24 जनवरी 1927 को सियालकोट पंजाब में हुआ था। हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जब भारत अविभाजित था। ओम प्रकाश के पिता लाहौर के एक स्कूल में टीचर थे और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को उसूल सिखाए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी में तमाम उपलब्धियों से बढ़कर हैं आपके उसूल। पिता हमेशा बेटे से कहा करते थे कि आपको हमेशा जिंदगी में सीखते रहना है।

ज्ञान की प्यास कभी खत्म नहीं होनी चाहिए और कभी ये मत मानो कि तुमने सब कुछ जान लिया है। और जानने की लालसा जिंदगी में बनाए रखना, देखना तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ओम प्रकाश लाहौर में एक फिल्म प्रोड्यूसर के दफ्तर में क्लर्क बन गए। बहुत लगन के साथ काम किया और फिर वो मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचे, यानी धीरे धीरे उनकी तरक्की होती चली गई।

0: पंछी।
1: हमने आपको बताया कि विभाजन के बाद जी ओम प्रकाश मुंबई आ गए। ये वो दिन थे जब उनकी जिंदगी का संघर्ष चल रहा था। संघर्ष के इन दिनों की रातें जे ओम प्रकाश लोकल ट्रेनों में सोकर बिताते थे। दादर से ट्रेन में बैठते, ट्रेन कल्याण तक जाती और फिर दादर वापस आती। जे ओम प्रकाश उस ट्रेन में ऊंघते रहते। जब पुलिस वाले देख लेते तो भगा देते थे, उतार देते थे। मुसाफिर थे जे ओम प्रकाश, चलते चले जाते थे लोकल ट्रेनों में अपनी मुफलिसी के दिनों में।

संघर्ष के इन दिनों में जे ओम प्रकाश को निर्माता निर्देशक मोहन सहगल की कंपनी में काम मिल गया। ये वो दिन थे जब मोहन सहगल न्यू दिल्ली फिल्म बना रहे थे। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर बन गए। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में जे ओम प्रकाश चिंचपोकली नाम के एक इलाके में चौल में रहा करते थे। अभिनेता राजेंद्र कुमार भी उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और वहीं उनके साथ रहा करते थे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब वो फिल्म उद्योग में बड़ा नाम बन जाएंगे तो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि ये वादा पूरा भी हुआ। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर लगातार काम करते रहे और उन्होंने फिल्मी दुनिया में फिल्में बनाने के हर पहलू पर गौर किया, उसे सीखा और उसमें माहिर बन गई।

साठ के दशक का वो जमाना जब जे ओम प्रकाश के भीतर एक सपना पल रहा था, और वो सपना था प्रोड्यूसर बनने का सपना। उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की कि कोई ऐसा फाइनेंसर हो जो पैसे लगाने के लिए राजी हो जाए और उनकी फिल्म बन जाए। बहुत संघर्ष के बाद जब कहीं कोई उम्मीद नहीं बची थी, अचानक एक दिन फाइनेंसर का फोन आया, वो फिल्म में पैसा लगाने के लिए राजी हो गए। इस तरह से 60 के दशक में जे ओम प्रकाश ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, फिल्म युग। फिल्म युग की पहली फिल्म आई आस का पंछी। इस फिल्म के हीरो थे वही राजेंद्र कुमार जो चिंच पोकली के संघर्ष के जमाने में जे ओम प्रकाश के साथ रहा करते थे। हीरोइन थी वैजयंती माला, संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन। मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के निर्देशक बनाए गए मोहन कुमार, जो मोहन सहगल के असिस्टेंट हुआ करते थे। फिल्म आस का पंछी जबरदस्त हिट रही और एक प्रोड्यूसर के तौर पर जे ओम प्रकाश और फिल्म युग छा गए।

0: तक चले।
1: इसके बाद मोहन कुमार के ही निर्देशन में जे ओम प्रकाश ने अपने प्रोडक्शन हाउस फिल्म युग की दूसरी फिल्म पेश की, जिसका नाम था आई मिलन की बेला। ये फिल्म सन 1964 में आई थी। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे।

सन 1966 में जे ओम प्रकाश ने एक नए निर्देशक को मौका दिया। ये निर्देशक थे रघुनाथ झालानी, जो उन दिनों में बिमल रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे। रघुनाथ झालानी ने बनाई आए दिन बहार के। मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और आशा पारेख।

सन 1969 में रघुनाथ झालानी ने ही बनाई आया सावन झूम के। ये भी जे ओम प्रकाश की एक बहुत जबरदस्त फिल्म थी।

आपको बता दें कि जे ओम प्रकाश अक्सर ही नई प्रतिभाओं को मौका दिया करते थे। उन्होंने रघुनाथ झालानी को मौका दिया बतौर निर्देशक, जिन्होंने आए दिन बहार की बनाई। रघुनाथ झालानी बिमल रॉय के सहायक निर्देशक हुआ करते थे। इसी तरह उन्होंने मुकुल दत्त को मौका दिया और निर्देशन की दुनिया में उनका पहला कदम बना आन मिलो सजना।

प्रकाश की फिल्मों के नाम हमेशा अ से हुआ करते थे। ये उनका एक अंधविश्वास था कि अगर वो फिल्मों के नाम अ से रखेंगे तो वो फिल्में ज्यादा चलेंगी। इत्तेफाक ये भी हुआ कि दो ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई जिनके नाम अ से नहीं थे और वो ज्यादा नहीं चली, सचिन भौमिक के निर्देशन वाली राजा रानी और फिल्म भगवान दादा। ये दोनों फिल्में जे ओम प्रकाश के प्रोडक्शन से आई थीं और इनका नाम अ से नहीं था। वैसे अ से फिल्मों के नाम शुरू होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी का ताल्लुक उसी घटना से है जो हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताई थी। सन 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था, तब जे ओम प्रकाश के दोस्त मशहूर शायर कतील शिफाई ने जुदा होते हुए एक पर्ची पर एक शेर लिखकर दिया था जे ओम प्रकाश को। कतील शिफाई ने ये कहा था कि तुम चाहो तो इस शेर का इस्तेमाल आगे चलकर अपनी फिल्मों के लिए कर लेना। सन 1960 के जमाने में जब जे ओम प्रकाश प्रोड्यूसर बने और अपनी पहली फिल्म बनाने लगे, तो जो कहानी उनके पास थी वो थी एक नौजवान की कहानी जो फौज में जाना चाहता है और उसके परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं हैं। इस फिल्म का नाम उन्होंने कतील शिफाई के इस शेर में से ही लिया, आस का पंछी। आगे चलकर कतील शिफाई ने जे ओम प्रकाश को चिट्ठी लिखी और कहा, देखा मेरा शेर तुम्हारे कितने काम आया।

0: होगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का
1: जी। ओम प्रकाश फिल्मी दुनिया में पूरी तरह से डूब जाना चाहते थे, यानी फिल्म बनाने के हर पहलू पर जुनून की हद तक उनका ध्यान था। चूंकि वे फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए उनकी रचनात्मक प्यास अभी भी पूरी तरह से नहीं बुझ रही थी, और इसके लिए उन्होंने निर्देशक बनने की ठानी। सन 1973 में वो निर्देशक बन गए फिल्म आपकी कसम के जरिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार। वैसे आपको बता दें, आपकी कसम सन 1970 में आई के एस सेतु माधवन की फिल्म वजवे मायम पर आधारित थी, लेकिन ये जे ओम प्रकाश की फिल्मी समझ थी कि उन्होंने मूल मलयालम फिल्म के अंत को बदल दिया। मूल मलयालम फिल्म में पति और पत्नी दोनों ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जे ओम प्रकाश ने फिल्म आपकी कसम का अंत कुछ इस तरह से रखा कि पति पत्नी के कदमों में अपना दम तोड़ता है और इस तरह से वो अपना प्रायश्चित करता है।

जाने माने निर्माता निर्देशक बी आर चोपड़ा ने आपकी कसम को देखकर ये कहा था कि ये फिल्म किसी नए नवेले निर्देशक का काम नहीं लगती, बल्कि एक बहुत पके हुए और समझदार निर्देशक का काम लगती है। जे ओम प्रकाश ने इसके बाद बनाई आंखों आंखों में।

फिल्म युग हमेशा अपनी सामाजिक फिल्मों के लिए जाना जाने वाला फिल्म बैनर रहा। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो परिवार के साथ देखी जा सकें या जिनमें कोई सामाजिक पहलू हो। जे ओम प्रकाश ने इस तरह से मनोरंजक और खुशनुमा फिल्में बनाने वाले एक निर्माता निर्देशक के तौर पर अपना नाम स्थापित कर लिया था। सन 1975 में उन्होंने निर्देशन किया फिल्म आक्रमण का। सन 1975 जे ओम प्रकाश के करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण साल बन गया जब उन्होंने कमलेश्वर की कहानी पर गुलजार के निर्देशन वाली फिल्म प्रोड्यूस की

इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सुचित्रा सेन और संजीव कुमार। सन 1977 में जे ओम प्रकाश ने फिल्म अपनापन का निर्माण और निर्देशन किया। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश ने बाहर की कई फिल्मों का निर्देशन किया, यानी ऐसी फिल्में जिन्हें उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया था। ऐसी ही एक फिल्म थी सन 1977 में आई आशिक हूं बहारों का। सन 1981 में आई फिल्म आसपास के निर्देशक जे ओम प्रकाश ही थे। इस फिल्म की एक खासियत आपको बता दें, मशहूर गायक मोहम्मद रफी 31 जुलाई 1980 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। उनका जो आखिरी गाना रिकॉर्ड किया गया था वो फिल्म आसपास के लिए ही किया गया था। सन 1980 में जे ओम प्रकाश ने बनाई अपनी जबरदस्त कामयाब फिल्म आशा।

सन 1982 में अपना बना लो, सन 1983 में आई अर्पण, 1985 में आपके साथ।

जे ओम प्रकाश ने इस बीच में कई फिल्में बनाई जिनमें से कुछ बहुत कम चली और कुछ नहीं चली। सन 1993 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म का निर्देशन किया था जिसका नाम था आदमी खिलौना है। जे ओम प्रकाश अपने फिल्मी करियर में इम्पा के प्रेसिडेंट रहे, इसके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट भी रहे और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए भी उन्होंने जमकर काम किया। वो फिल्मी दुनिया से रिटायर हो चुके कलाकारों के कल्याण में लगे रहे थे।

0: आप सुन रहे थे निर्माता निर्देशक जी ओम प्रकाश पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मोहम्मद फखरुल हसन का।

कर्ज फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत आइए सुनते हैं हीरो फिल्म से। आवाज़ रेशमा की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत।

थी, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और इसकी तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप लुत्फ उठा रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा का। कार्यक्रम की अगली पेशकश है खामोशी द म्यूजिकल फिल्म से। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और जतिन ललित का संगीत है।

खुदगर्ज फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। गाया था मोहम्मद अज़ीज़ और साधना सरगम ने, गीत लिखा था इंदीवर ने और इसकी धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। अगला गीत आइए सुनते हैं क्रिश 3 फिल्म से, आवाज़ें हैं रिशा चिन्नाई और जुबिन गर्ग की, समीर अंजान के बोल हैं और राजेश रोशन का संगीत है।

मोहरा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। शब्द रचना इंदीवर की थी और इसकी तर्ज बनाई थी विजू शाह ने। मुस्कान लीजिए सुनिए इस फिल्म से अगला गीत। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। समीर के बोल हैं और निखिल विनय का।

रेडी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी राहत फ़तेह अली खां और तुलसी कुमार की। शब्द रचना कुमार की थी और इसकी तर्ज बनाई थी प्रीतम ने। और ये है रजनीगंधा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म बॉर्डर से। आवाज़ रूप कुमार राठौर की है, गीतकार हैं जावेद अख्तर और

इसी नगमे के साथ ही अब आज का रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त करने की मोहम्मद फखरुल हसन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: 26 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से मैं बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित निष्पक्ष और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हितों की रक्षा पर भी जोर दिया। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026